0: आकाशवाणी इम्फाल हौजे मुक्ताबी रसी इंग्राजी वारी वताई.
1: गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स एंड वेलकम टू द इंग्लिश टॉक प्रोग्राम. टुडे वी प्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एंगेजिंग डिस्कशन ऑन फाइंडिंग पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ. आवर गेस्ट इज मिस्टर गोपाल मेंडेस, also known as Sri Gopal Bhatta Das, an educationist and a Bachelor of Commerce graduate from the University of Salamanca, Castilla y León, Spain. In this thought-provoking conversation, we explore how individuals can discover purpose, overcome challenges, and lead more meaningful and fulfilling lives. This program is conducted by Kakchingtava Mritesh Sharma. We invite

0: थैंक यू।
1: हेलो
0: हेलो सिजे डाइपिन फोन प्रोग्राम ओइबि रेको
1: नाहरोल की खोंजेल की फोन इन प्रोग्राम नी मरु की मिंग अमादि लाइफम हाने हाइबियो
0: आई गे मिंग अहुं संगम सुजलता आई गे लाइफम ने कैनों थोंखा मखाले गाइदरिन
1: याम नुंगाइ जे मरु कॉल तो बिरक पा मरु न खंगबिनिंग बा हंगबिनिंग बा वाफम सिंह खुगी स्टूडियो द हौजे मरु पिंकी साइकोम लेंगशिन दुना लाइब्रेरी हंगबियो
0: जे पिंकीदगी आइना खंगजनिंग वाफम सेको हौजे हौजे लाइलिबा अखै मॉडर्न सोसाइटी जि दको हौजे की समाज दा हबे दारे थाइने गी थाइने दगी लेयगलाबा अखै की ट्रेडिशनल फोक मेलोडी सेको करमना योखतुना मदि सस्टेन कमाइन तोरगा थमगदा गे हब दो जेगी माइकै दगी किटंग गाजनि
1: याम नुंगाई जय मरुप कॉल तौ बिरक्तुना थौरम सरुक याबीबा मरुप की वहांग असगी पाउखोम मयां पुने तामिने रेसी थागचरी
2: यामना कनो फजा क्वेश्चन ने को हाइबदी हान लेरमी ब पोट से अखैन हौजे हौजे कमाइन यो खतलग थम ग तोइनो हाइबने बा यो खत बा हाइब से अखै गी हौगलकलि बा युथ्स की से यामना मखा पोले ब को अखै गी कल्चर अखै गी ट्रेडिशन से खंग न चलब म तुंग द अखैन पोट से यो खत ब गम दने बा कै गम अखैन से खंग द बि द ना थैर ग चखि ब म तम द दि अइन फन यो खत निंग जु कशु यो खत ब गम र दो मांग र दोइने बा
1: होय होय खंग द बनि ना
2: खंग द बनि ना अदुना कमाइन यो खत क दे गे हाइब म तम द मयाम गी ममांग द थोक बा एग्जांपल ओइन पि बि ल कोइ छै छक ब मो अइन हाइ तारे मयाम द कमाइना एवेयर ओहन गदे गे हाबसे मयाम द सु पाम द ब मोंग अम तौब म मथौ ताय ब कल्चर हाबसे चेंजेस खर दि दुम लाकनी हाबदि मतम मतम दुगी चटना बी से दुम फी मक त ओर ग सु थाइन चही तरा ममांग द इलम ब फी दो खुजी गदे कितन डिफरेंस दुम लै बे यावे दगी सुंगलै लै तबा दुम लै ब फी शुआय ब दुम लै ब फी दुनी ब खैन ओहन दसे अदु अदुम लै ब फी दु द कमाइना लहन गदे गे हाबद खर मथेल कितन दि हापम चंगि दन को मचु द ओर ग सु कनो द ओर ग सु दुना अखैन एज अ इसै सखपी म ओइन हाय तारेने कमाइना पामन गदे के हाय मतम प्रेजेंटेशन जिजु याम न मरु ओइन हाय जब तारे आइदी आइना परफॉर्म म तब म तम द आइगी कॉस्ट्यूम आइगी मेकअप अदगी आइगी बॉडी जेस्चर्स आइ कमाइना मयाम द प्रेजेंटेशन तौगनी सिगी सिजु परफॉर्मर म ओइ तार गदे याम न मरु ओइन हाय जब तारे अखोइना फनुंग इसै अमा मयाम द पामहन गे हाइब तारगदी हुजिक कंटेम्पररी फोक सोंग मयाम थोलै से कंटेम्पररी फोक सोंग थोलक पसे के नो हाइब मतम द हुजिक जेनरेशन जिन तानिंग नब कमाइन तहन गद गे मोइदा सिगी पोट सि याम न लुई ब सी से मोइन तार ब मतुंग द एटलीस्ट मोइ खरा दि खंग अनि खंग मतुंग द ओरिजिन जे कैनो हाइब से अमुक थिरक तोइने ब ओरिजिन जो थिरक पकान दनि ब अमुक खंग तोइसिना अदुना फर्स्ट द एबीसी हाइगद्रा एबीसी जहाना एप्पल हैन कलर एक छल लगा हान दोक लंग उहन बम चंगनी बा अंतु दुना हाइ याम हेक त हजल लगा तो भाई बन ते बगो हाइ दी अकोई ड्रेस हेप मतम द फजन नियम चुम ने सेपियो अदो अकोई ओरिजिन मे बा फोक त ला आगदी अदु म मे हम द थुगाई बि द ओरिजिन दो फजन तुम थम बि बा
1: अचुम बा वफम नि नसाई अकोई की ओइबा पोचे अदो म लाइन न बहन न ब मतम द नौ न थोक दौरी बनि ने हान न मसीगी आइडिया से अदुना लाइन हान खंगन ब म जांगे अदुगा मसी पाम नरे खंग नरे हायर ब मेकअप तु द करी नो हाइब से थिजिल लकनी मसी द त खंग मंगम गदि हाइदन हाइबी बने याम नुंगाई जे मखा ता न खंगजनिंग बा से खोइ मियोय बा हाइबसी हयंग करी तौगनी तुंग तारक पद करी म थबक बाइ खत्सिगे हाइदन खनव गाक्तनि अदुना सोइदन म कि मरुप कि सु तुंग तारक पद करी थबक थौरम पाइ खत के हाइन खनबी ब म्याम म लैरम गनि थाजे अदु हुसि की ओइना करम करम ब प्रोजेक्ट्स इन प्लान से अनो वलाई बगी हाइबगी मतांग से सकि तंग खंजा होगे
2: हुजिके ओइना दि मयाम सुम पुल्लगा अंगांग ngai सुम तंबी ब खपी बा दगी सुम आइगी पीएचडी हुजिक तो जरी एदोने पीएचडी के आइगी फोकस से आया मने तो जरी हाइ ताए
1: होय मरुप न खनबिरी ब अदु मक्सु माई पाक न पांग थोक पंगम बोय बियो हाइने खैगी माई कैदिगी से थम जरी वाडी दि सानेनिंग ब कया म खंग

0: हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग कनाई बिरबनो
1: मैम भाई खुराई दिगी मैम चाने
0: खुराई दिगी मैम चा
1: भाई भाई
0: मैम चा कमाई तो रिगा हो जी कांसी बो
1: मैम बदु सुन लाई रही जब ताने
0: होय होय नसी दी करी करम बफम गे सही तासी गे
1: मैम नसी दी जंबा फ्लम दगी ने पुष्पा ये सकता तारा मरीनी पान बने से उसे जो मैम आदमी ने ताजे के
0: होई होई तरह मरीनी पान में था जाता हुआ दो
1: होई होई मैम
0: हो जिस से मैम चाह से चाह इसी गाड़ी ठों कर ब्रो ना चाह कर ब्रो
1: मैं जो प्रोग्राम से वर्ग चाह के ना चाह की चाह खुद लूए
0: ओ ओ कई मतलब इन होना रहा
1: मैम नशे दी करो मैम माइलेन वाली कम
0: होई होई मरक मरक तो माइलेन ठों बस

0: उठा माजा किंग। ओ माजे किंग।
1: मी
0: घरी नाही जायचा का? मी तुझे गर जाने जी गर, मी छम्मा छलो तू माजा किंग किंग किंग किंग।
2: गेट की खुदोल दा अदोमना तोंगान तोंगान बस सही सकप सिंग देगी गेट मथंग मथंग वहीं ताबिरी खुदोल की मरी सुबह दा मुलान थोक चरी जैस्लिन रॉयल अमा दिमाग के कांबो देगी गेट अमा

गंज भी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं. बट इफ आई डोंट कम बैक, दोबारा शादी मत करना.

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड मॉर्निंग कनाओ बिरबनो मिगले फम हैबियो
1: यम तपती नि दाम कन गुड मॉर्निंग
0: हेलो ले दिस थोरम दतराम नोक चरी मिगले फम हैबियो ताबिरबा
1: गुड मॉर्निंग नि दा
0: होय होय ताबिरबा फसना
1: ओ क्रेड तार
0: होय होय हैबियो मिगले फम तक बियो
1: कुराई देगी पाबी को
0: कुराई कदा वेदे उबिरबनो
1: कुराई गोन लेकाई
0: হয় মিংদম তঙ্গ হান হাই
1: পাপি
0: পাপি হয় হয় পাপি বুতরাম নকচারি খুঁজে ধরম কী কারণ মাফল ফোনপি দিয়ে থামি
1: কেন
0: ইনা আগে মানে আজ পুখ ছিব কইজু জাম ছেনে যায় নেদা আদো আদুম বদো কইজু জামনা কেন তো বদ
1: ইসা হচ্ছে চা ইসিনে হোনবি কারি মথেলদি থাকে ইরোম্ব
0: ইসুসিনে থাকবি ইসাগে ইরোম্বা মতো ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাকবি ইসুসিনে থাক 아 농도 콩다리바 이몽네 징바 시기마 땅다 케나바 카라당 탐비람나바수 하이저리고 기 마통 담마가 담막 바소 야반에 오이도니바 아두나 마탁통 버싱 시수 아두 막 파나 마코이슈 마 마코이 모 마타우세 에 이자이슈 마카 하우럭리 버싱 시나 마타우 파타바 마타우 싱세 담다나바 와하이다 보이르스고 아데기 아이나 다우리 바 타박 통 더 보이르스 아파바다 다우게 하이나 칸독 미나라가디 마카 타바소 돔 파라카니 하이니스 칸제고 얌 누가이세 아 솜네 거기 토로마시다 서로게 아미럭두나 와폼 카라 봉독 비람 베기다 막다 타게체리에 돔보 카타바 콜라 뭐 나이미나시
1: 어 타게체리다 오케이

0: ஹலோ ஹலோ ஹலோ லேடிஸ்கி தரம் தரம் உச்சரி ஹலோ தவிப்ரா
1: ஹலோ
0: தவி ஹய் ஹய் ஹலோ லேடிஸ்கி தரம் தரம் உச்சரி கன ஆபிரபன மிங்லேஃபம் ஹைபியோ ngasi ahan bo phong bi boi doi ra a am ta tap tha bi go hoi hoi som na ngang chalak paga ai nang hang paga nan chan na re du na ta za dre a ahan bo phong boi bi doi ra som se
1: man
0: hoi hoi
1: ma am di chai to uri bo
0: go hoi
1: du ga phong ba di dong a za ma noi gang di
0: haraw min na ra si ko du dia a ka shone in fa gi su a no ba ma ru pa ma phang za re ko ngasi e ko gi live phone in program si da
1: hoi hoi
0: a do ma ru si gi ming ga lai phang gong tang khang ja gi
1: ओ
0: आई गेमिंग ने
1: गीता को वेब का
0: होय काई दे युनाम हुइरोम देगी गीता
1: आ
0: होय होय
1: असो छादि फंगे दो निमि को
0: हे निपिगन को आ होय होय अदोंगा सिदी मि कुप असिदा थाजब लैरब नत्र हाइबदि आकाशवाणी इनफाल समय तो न फोन बैक चरी हाइबगी
1: आ आ
0: मा खाता बदो सो दो म फोन तो बिरो को
1: ओके दो अदो आम थिंग बदि आमे यु को
0: ado aisu hambo ibani na ko hoi haining ba maya marak tu de ki ko ama khajik tang maroi ba ama khajik tang maya puna tamin na ba ya ba ningsing bira ga ko thangat pirak na ba haizari ko somda
1: hoi haining ba di ko hoi gi business ya hoi gi mama hoi business na aso na sa ni mu di ko le sa ni na tam sida hoi gi sum am pe sam na
0: ꯍꯪꯒꯦꯗ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯁ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯌꯥꯅꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯇꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯗ ꯑꯍꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯠꯂꯤ
1: 아, 오아버지 전화로 가면 갑니다. 나. 아, 누군가지, 비, 보이가, 마마, 신스나, 아, 간통원선이 그냥 발달.
0: 허이, 허이, 허이, 마마, 비, 신스나.
1: 弄完了还不得，别把咱们的买了，那这个书起码就是路那都等了，一般路都等了，飞机啊，不是干的看了这么多。嗯哼。啊，都那用罢了，看到地，他都给，感觉是他听了不都完事了吧？
0: 哎，我问妈妈听了不都的，完了都也还等吧？哎哎。
1: 啊，都不都，从在海里还有没说，没为了干的用罢了，看到飞机听了不都的，困难是谁的那个？嗯哼哼。
0: 아두고도파도노토게삼지남아이제가시디하이하이야농아이제이솜나스고이사다학탱드나탱나비바와펌카라펑독비두나고하이바디이마이바기마사이골다농아이나상가이다레리칸다디이마이바싱스나마자싱스카리다와키가다게하이두나헤네헤나농아이한두나고아헤네헤나농시바도농시바다아왓플레이타나비비두나고 아무케헤나농아이한두나탐비라마가아토파유마마다짓크라가고아토파유마마다다수이마이파니칸디에코이니올스나레이루도이네바아도레이루라가아오원바디에두막탱나라카다우리바네바아두고마오원바싱도탱나라카니하이바시하나망정나나카라마카이마이파나탁비라마가디에하이나솜나탁비바네바고

सुक्रिया टूरिस्ट। नमस्कार दोस्तों, ये है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र का FM संगाई चैनल 103.5 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त थोकचोम गीता। स्वागत है आज के गीतमाला कार्यक्रम में।

दोस्तों, सुबह की शुरुआत किसी अच्छे विचार के साथ हो तो पूरा दिन अलग नज़र आता है। कहते भी हैं कि एक विचार इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देता है। दोस्तों, आज रविवार है और आज हम आपको सुनवाएंगे संगीत धमाका। तो कार्यक्रम के पहले पायदान पर सुनते हैं आशीष कौर की आवाज़ में ये भक्ति गीत। गीतकार है अमृत खुशरो।

दोस्तों अभी आपने संगीत धमाका के पहले पायदान पर सुना आसिस कोर की आवाज़ में एल्बम सूफी जॉय से ये गीत। गीतकार है अमीर खुसरो और सोहेल अख्तर वारसी, संगीतकार है सितीज। अब सुनते हैं अगला गीत जुबी नौटियाल की आवाज़ में बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला ये गीत है। गीतकार है मनोज मुंताशिर और संगीतकार है मीट ब्रदर्स।

दोस्तों, अभी आपने सुना आशा भोसले और हरजोत कौर के युगल स्वर में यारा दिलदारा से ये एल्बम गीत। गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे लीजो जोर्स और कल्याण जी आनंद जी। दोस्तों, हमारे शब्दों में इतनी ऊर्जा है कि वो हमारे भाग्य निर्माण करने की ताकत रखते हैं। जब हम दूसरों को तकलीफ देने के लिए या उनका अपमान करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस तकलीफ और अपमान की ऊर्जा हम तक गुणकों में वापस आती है और वैसे ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। इसीलिए कहते हैं कि शब्दों का नाप तोल करके ही बोलना चाहिए। अब सुनते हैं अगला एल्बम गीत विद इन यू से। आवाज़ बेजू मंगेशकर के हैं, गीतकार है बाबा शाह का, संगीतकार है बेजू मंगेशकर। तो सुनते हैं ये एल्बम गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इम्फाल केंद्र से संगीत धमाका कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब सुनते हैं गीतकार संगीतकार सबीर अहमद के ये एल्बम गीत में चला से गुरु रंधावा और इलवा वंटूर की आवाज़ों में ये गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना जी म्यूज़िक ओरिजिनल एल्बम का ये गीत ऐश्वर्या पंडित की आवाज़ में। गीतकार थे अनजान भट्टाचार्य और संगीतकार थे कुमार। अब सुनते हैं अगला एल्बम गीत विद इन यू से। आवाज़ बेजू मंगेशकर के हैं, गीतकार है हसरत शाह हुसैन और संगीतकार है बेजू मंगेशकर।

दोस्तों इसी गीत के साथ आज का संगीत धमाका अब यहीं समाप्त होता है। दोपहर 2:30 बजे फिर आपसे कंगला चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

इसे इसे तो हंजे की पगल हुई ना मतलब इसे की खुद उससे दुख ना तो हंजे बा मतलब अंगस तलो जरे अदम ना थरम ताबीरी बसे आकाशवाणी इम्फाल के मेगाहर्स चामा का हम दस मंगा दस दुख चरी बा एफएम संगाई चैनल देखनी

खुमन आई भयोग नब शाम पागल थाग नबा लाइकाई फुक्सु लंग बदा पामिल सिंजाऊ लांग बदा खुबागी कुरोल मक्त बुहुर गले लवाई कुरिल पारा गले दू नशी कुब नोंग दगी लेकाई शिलंग बजचगे नदुनिंग थोई हाक्षू

0: ꯆꯤꯔꯤꯒꯤ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ 12ꯒꯤ ꯁꯥꯁꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝꯗ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯏ ꯗꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯄꯥꯂꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈꯤ ꯔꯥꯏꯖ꯭ꯌꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎ ꯕꯤꯚꯥꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯔ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯏꯃꯥꯅꯨꯌꯦꯜ ꯃꯦꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯑꯅꯤꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯀꯤ ꯅꯥꯏꯁꯣꯔꯗ ꯚꯥꯔꯠ ꯏꯅꯣꯚꯦꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯐꯥ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ 2026ꯀꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯀꯣꯠꯂꯦꯟ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯖꯤꯜꯒ ꯃꯣꯔꯣꯛꯀꯣꯒ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ
1: मोबाइल चार्ज करना
2: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
2: देखा
1: पापा रुको मैं पे करता नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
1: फ्री वाईफाई है ना
2: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
1: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
5: ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟ ꯁꯤꯡ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤ ꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯩꯀ꯭ꯔꯨꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯛꯂꯦꯅꯦ ꯏꯉꯥꯊꯥ ꯆꯨꯔꯛꯂꯦ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗꯤ ꯏꯀꯪ ꯊꯥ ꯑꯣꯏꯔꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ

0: लागले ने इंगा था चुरकले कुंगी नौजु थमुई मालेम दी इकंग था ओहिररे ताविरे था सिगी से सकपा खुंद्राकबम जीवन सिंह सैरेंगबा लोंगजम तोम्बी सिंह पुथोकपा हैग्रुजम देवेंद्रा आकाशवाणी इम्फाल हौजिक मथंगी थोरम फंबीरगनी
1: आकाशवाणी इम्फाल लानथोक्सरी पाउगी सकता।

गेट की खुदोल ताबीर बसिंबू रंजन का शब्द सु तराम ना उक्चरी अदम ना नुमाइरब गेट ताबीर बसी संगाई चैनल दगनी मधंगी गेट की खुदोल की सैशकले बसिंग आशा बोंसले अमदी मोहम्मद रफी खुदोल दमजरी मैं अपना तमिनरसी

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए जरा, आकाश में चांद अगर ठहर जाए, हवा अगर कुछ मध्यम मध्यम आपके कान में कहने लगे और दिल पुराने दिनों की सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतरने लगे, तब समझ लीजिए कि मोहब्बत अपनी दस्तक दे रही है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हर सिंगार और शमीम खान हैं अभी आपके साथ। आज आपको लेकर चलूंगा उन एहसासों के पास जहां प्रेम शब्दों से नहीं खामोशियों से बोला जाता था, जहां एक झलक पूरी शाम को रोशन कर देती थी और एक प्रतीक्षा उम्र भर की कहानी बन जाती थी। तो आइए इस मधुर सफर का आरंभ करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

प्रेम शायद दुनिया का सबसे शांत और गहरा एहसास है। ये कभी तेज आवाज में नहीं आता, ये तो अक्सर किसी शाम की खामोशी में, किसी अधूरी चिट्ठी में या किसी पुराने रास्ते पर अचानक लौट आई याद में छुपा मिलता है। अच्छा, आपने गौर किया है कि मोहब्बत में अक्सर शब्द कम पड़ जाते हैं और आंखें बातें करने लगती हैं। कितनी सुंदर बात है कि समय बदलता रहता है, मौसम बदलते रहते हैं, मगर किसी का इंतजार अगर सच्चा हो तो बरसों बाद भी वैसा का वैसा ही रहता है। आइए इसी एहसास को आगे बढ़ाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: दोस्तों कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुनते हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हाजिर होता हूँ एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और विनर्स को क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रूपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रूपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रूपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रूपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
5: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
6: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान। दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका नाम नहीं होता, बस एक अपनापन होता है, एक सुकून होता है, जैसे किसी बरामदे में रखी पुरानी कुर्सी जिस पर बैठते ही यादें पास आ जाती हैं। पुराने दिनों का फ्रेम भी कुछ ऐसा ही था, धीमी चाल से चलने वाला, सब्र से भरा, जिसमें मिलने की खुशी ज्यादा और प्रतीक्षा का सौंदर्य था। एक मुस्कान कई दिनों तक याद रह जाती थी, एक मुलाकात महीनों तक मन में महकती रहती थी, और अब उसी महक को महसूस करने का समय है। और प्रस्तुत है मधुर स्मृतियों से भरा एक प्रेम गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन तक के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ऑपरेशन ओशन मिशन और गगनयान जैसे कार्यक्रमों ने विज्ञान और नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में स्थापित करने में मदद की है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। इसराइल ने लेबनान की राजधानी पर ईरान समर्थित समूह हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि ये हमले उत्तरी इसराइल में हिजबुल्ला के हमलों के जवाब में किए गए थे। बीते दिनों इसराइल ने बेरूत के इलाकों पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी इसराइल पर हमले किए। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में आज बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France today after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
3: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
2: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice and his discussions with French President Emmanuel Macron. During the briefing, the Foreign Secretary Vikram Misri described the Inter-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. He highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on the 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district this afternoon. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an ex gratia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The Criminal Investigation Department or CID today interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face to face at Bhavani Bhavan, the CID headquarters in Kolkata. In ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match in Edgbaston in Birmingham. India set a target of 171 runs for arch rivals Pakistan. In reply, Pakistan were all out with 106 runs in 17 overs. Earlier, opting to bat first, India posted 174-6 in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा, विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
2: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया, जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में 3-4 या 2 या 3 दिन का कैंप था मुंबई में
1: जी।
2: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
2: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
2: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय है, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिलाकर के हमारे यहाँ सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिंदुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़ करके 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइमलाइन। हमारे 95-97% जहाँ पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहाँ हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो भी हमने हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेस में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है, ये मात्राएं किस तरह से दिखाती है कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
2: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ, तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है, द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपेंड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूर अंदेश व्यक्ति थे, हिंदुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए,
1: बिल्कुल
2: हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया, जो तीन स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O, ड्यूट्रोस ऑक्साइड। लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 इस तरह से,
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
2: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम। तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। कैसे? उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
2: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
2: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी इजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है। तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे
1: जी,
2: पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच्ड नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही है। और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है। तो इस तरह से किया था, और ये जो आपने कहा अप्रैल मास में हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया, और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने इसकी
1: प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
2: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला है
1: जी।
2: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहे तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाए, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का, एंड देन मैच्योर इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसी उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
2: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में, और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है, वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहाँ पे 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं। तो क्वांटम में, और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया क्योंकि उसके चार वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली
1: जी।
2: यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर ले और हम उससे आगे बढ़ जाए।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा मिलेगा?
2: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हट करके सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें अभी हमने पहल कर ली है, और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहाँ पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
2: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, चूंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नीमन पिक डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
2: और उसमें हम अलग अलग चरणों में उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
2: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जब पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया था, गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि सभी इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं, पहली बार हमने यहाँ ट्रायल किया, यहाँ सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाएगी?
2: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो
2: निश्चय। अब देखिए आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बड़ी ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट। लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं। तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो है ही हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउस होल्ड, एवरी इंडियन हाउस होल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर। तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
2: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे है जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यही शोध किया, यही पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए। और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
2: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
2: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे,
1: बिल्कुल सर,
2: यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है। एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं। और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
2: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग है, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
2: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से एक है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुंदर से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहाँ 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगा।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
2: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
2: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हमें 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये भारत के बढ़ते हुए कदम है जो लगातार और ज्यादा सशक्त होते हुए नजर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर, और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही है, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan. Much of the conversation around development focuses on policies, budgets and reforms. But the real test of governance is the ability of institutions to deliver outcomes at scale. This, in turn, shines the light on state capacity. In the last 12 years, India has banked 50 crore people, conducted seamless vaccination of 100 crore people to combat the COVID-19 pandemic, and lifted more than 30 crore people out of abject poverty. Has India then cracked the code on execution, developed the administrative capacity it lacked? To answer all this and more, we have with us today Ashish Dhawan. As founder and CEO of the Convergence Foundation, Ashish is someone who has spent years working at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and helping develop state capacity, and hence a perfect person for this conversation. Ashish, thank you so much for speaking.
5: Thank you for having me.
4: Ashish, I wanted to begin with your work, which is basically at the intersection of philanthropy, public policy, institution building, and strengthening state capacity. Based on this experience, has India finally begun to crack the code on execution, or what you often say, acquire the transnational muscle?
5: I think we have. As you pointed out, I think India is admired in the global south for the scale at which we have managed to achieve things. As you mentioned, with say something like Jan Dhan, what we've done is amazing. Or even if you look at our capital markets, when we changed the architecture to bring in SIP, no other emerging market, you know, has the scale at which. And of course, rolling out our, whether it's roads, rural roads, Saubhagya for electricity, Jal Jeevan. So I think in mission mode, we have achieved a lot with our hard infrastructure. I do think soft infrastructure is more challenging and we need to be more patient. But I believe that there has been a step up with the use of technology, with the use of mission mode, with the focus on KPIs, with the state generally developing certain muscle, this translational muscle, that I do think that it's been a game changer in the last decade.
4: Ashish, you know, you mentioned SIPs is so true because now almost every PIN code is covered by the State Bank of India Mutual Fund. So that tells you how big the footprint has become. Based on all these examples that we discussed, what is your sense about how India has grown capacity of the state or the administrative capacity?
5: Yeah, so obviously when people look at state, they tend to think of the elite services. And I think that's fine. But really what we need to look at, in my mind, is the people at mid-level and lower levels in state capacity. So if we take something like education, it has the largest base of government employees because school system is very large. We have 11 lakh, 10 and a half lakh government schools. And the reason why it's harder than, say, doing rural roads or rural electricity, at the front line, we have almost 60 lakh government school teachers. And nothing will really change in terms of outcomes unless the classroom transaction changes. So I think the hard part of this soft infrastructure is that you have to work through people. And we don't recruit that many more teachers anymore because we have achieved a fairly good pupil-teacher ratio. With our demographics now, you know, yes, we are growing a little bit in secondary school as enrollment increases. But in primary school, actually, enrollment peaked a while back. It's actually declining now as the number of births has come down over the last few years. So I think we will have to do whatever we would do with the current stock of people. The churn rate is only about 3-4%. So it's not like you can get a new breed of people. With the current set of people, how do we achieve better outcomes? That is the challenge. And I think that's a slow process. So unlike building a road, which can happen faster, I think we have to realize that this is a slow moving indicator. It'll take 10 years, 15 years to achieve the outcomes. But with a mission like Nipun Bharat, I have seen that this has already started to lead to changes on the ground in terms of teachers realizing the importance of foundational learning, teachers starting to use daily lesson plans, teachers starting to do a weekly formative assessment, teachers starting to identify the bottom half of children and see what remediation can be done to help them improve, teachers understanding the goals very clearly. I think these are big changes we have seen in the last 5 years. But even as we rolled them out in states like Uttar Pradesh, we did a great job. You found even after 5 years, there's only about 60-70% compliance because not every teacher will come on board. You know, it's a bell curve. You get the early adopters, then the others do it, then some don't. So it's hard work and you have to be patient. And so I'm very glad that government now is looking at Nipun Bharat 2.0 because government has realized that, you know, in 5 years, it's not like we're going to solve the problem. It'll need 15 years of hard work to actually make this happen at scale. So because human beings are involved at the last mile, education, health, livelihood, these are much more complicated than the hard infrastructure.
4: In fact, your foundation has worked very closely on this Nipun policy. So tell me, based on that experience, is this replicable across the country? Uttar Pradesh is the first test case for this.
5: Yes. So actually in Uttar Pradesh, when we went meet the chief minister, he immediately said Bunyadi Shiksha is important. They already had something called Kayakalp, which was to improve the school infrastructure. So they were doing a good job. But then they started something called Mission Prerna. And this is pre-COVID. And Chief Minister himself agreed to certain goals, very clear goals on oral reading fluency. Children need to read 35 words per minute in class 2 and 60 words per minute in class 3. Very clear goal was communicated to all teachers. Chief Minister took this document and made him line up all the officials. And unhone kaha ki hum shapath lete hain, you know, we will achieve these goals. So he got the whole system aligned, put a very good officer for Mission Prerna, who was there for 4 years, so there was stability. And, you know, they have seen dramatic improvement. If you look at Parakh, which is government runs National Achievement Survey, or you look at even ASAR, which is a third party survey, Uttar Pradesh is the most improved state and at very large scale. So they started earlier. Then Madhya Pradesh launched Mission Ankur, Haryana launched, and then after NEP, the Honorable Prime Minister decided to make it a national mission and launched Nipun Bharat. We then started to support 11 states with this mission. And as I said, we've seen the change is gradual, but we have seen real change on the ground with Nipun Bharat and the improvement. Our foundational literacy was so bad, you know, if you look at it 6 years ago. World Bank publishes this learning poverty report in terms of percentage of children at the end of class 5 who can't read class 3 text. And basically, if you've missed the bus, you missed it permanent, because the curriculum by then assumes that you have to read. So 55%. And sub-Saharan Africa is much worse. But if you looked at countries like China, they were at 15%. Developed world is in single digits. So India has a long journey. And normally countries are improving at the rate of 0.7 percentage points per year. So if India had to follow the normal trajectory, even in a decade, we would get from 55 to 48% of children. I think because we started Nipun Bharat, we are attempting to bend the curve. It's called bending the Preston curve. And I think we can do it much faster. I believe we'll go from 55 down to 25. It may take 15 years, but it'll be much faster than any other country has done it before.
4: The final thought that based on the last 12 years, based on your own experiences, very short response as to how do you, is a cup half full or half empty?
5: I'm in the half full camp. I think that we are poised to do great things as a country, both economically and also on the development side. I can tell you that when I travel across the world, I mean, some countries already have done a much better job. They started earlier, like China on human development has, and economically also they did better. Vietnam, I think, really prioritized human development early on, much before India did. So we may have started doing it more recently, but they have been doing it for 30, 40, 50 years. I think the communist system brought this focus on basic health, basic education very early on. So I think that we've started on the journey. As I said, the hard infrastructure part, we have the formula. On the soft infrastructure part, we are developing the formula and we need the patience. I think with slow moving indicators, nobody has taken an education system from poor to fair to good to great and lagaud a chalang and done it even in one decade. It's a journey, even from poor to fair is a decade, 15-year journey. Then you get to the fair level and you go to good. That's another 10, 15-year journey. Even in Singapore, when they went from good to great, was a 20-year journey. So I think in this, the problem is political cycles are shorter. So you need leaders who have the confidence to back something for a longer period of time, because you may not see immediate wins like you see when a road is constructed or when water comes to a home. You do see certain, so what we also realize, because obviously politicians want to show a win, like say with reading, reading is a very hard task. So to improve reading at scale where every child can read with meaning will be impossible in 5 years. But we see that, look, about 30% of children couldn't even read letters. Can't we solve that problem in 5 years? Of course we can. We can do that. Can we at least show that the child can start to read basic text in front of their parent a little bit better than they were doing before? Of course we can. So I think we have to pick a ladder of metrics, I call it. The eventual goal may be hard, but then there are these things behind, you know, which are easier to achieve and you can show. And they are, it's part of the ladder of progress. So I think that's very important in order to keep the political salience high behind these issues.
4: Unfortunately, we are out of time. Thank you so much for speaking to us, Ashish.
5: My pleasure. Thank you for having me.
3: In the special series, 12 Saal Vishwas Ke Vikas Ke Jan Kalyan Ke, you are listening to an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer was Anil Padmanabhan, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम खान।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट पिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड़ पंडरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the Inter-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: The Ministry of External Affairs conducted a special briefing in Nice on the outcomes of Prime Minister Modi's visit to Nice, France. During the briefing, Foreign Secretary Vikram Misri described the India-France Innovation Roadmap 2030 as a key outcome of the visit, aimed at deepening collaboration in critical and emerging technologies, artificial intelligence, startups, research and academic exchanges. The Foreign Secretary highlighted the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance and the establishment of a National Center for Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. The National Testing Agency or NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to undergraduate medical courses. Candidates can download the admit cards from NTA's official website www.neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district yesterday. Prime Minister Modi has expressed grief over the loss of lives in the accident. In a social media post, Mr. Modi said that his thoughts are with the bereaved families during this hour of grief and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of the kin of each deceased. He added that the injured would be given 50,000 rupees. Jharkhand's rich cultural heritage has received a major boost with 11 traditional products from the state being granted geographical indication or GI tags. The newly recognized products include Bhoya Sari and Fabric, Kochai Silk Sari, Kesaria Kalakhand, Dokra Craft, among others. And in ICC Women's T20 World Cup, India defeated Pakistan by 64 runs in a Group A match at Edge Bastion in Birmingham. Batting first after winning the toss, India posted 170 runs in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
1: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, आप जानते ही हैं ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में आम का जिक्र किया है जो कि बेहद खास हो गया है मन की बात में उल्लेख होते ही। आम फलों का राजा जो गर्मी के मौसम में हमारी रसोई में हमारे फ्रिज में और हमारी प्लेट में अपना स्थान सुरक्षित रखता है, भारत में उसकी क्या स्थिति है, हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे निर्यात में उसका क्या स्थान है और बदलते मौसम के साथ आम की पैदावार कैसे बदल रही है, ये सब बातें आज हम करेंगे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किन शब्दों में फलों के राजा आम का उल्लेख किया है मन की बात में।
2: साथियों, भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जर्दालू जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है। आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए।
1: तो माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द प्रेरणा देते हैं आम उगाने वाले किसानों को भी, साथ ही भारत में जो कृषि अनुसंधान है उसे भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम लगातार इस पैदावार को बेहतर करें और निर्यात में भी अपना स्थान सुरक्षित रखें। मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय करवा रही हूं। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक उद्यान विज्ञान से डॉक्टर संजय कुमार सिंह। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत नमस्कार सभी।
1: हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। डॉक्टर जयप्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं श्री अवनीश कुमार त्यागी, आप बागवान हैं, नर्सरी आप चलाते हैं, आम के किसान हैं, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो आम के बहुत सारे नाम लिए हैं और हमारे जो श्रोता इस रसीले फल को बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारा टेस्ट उन्हें इस समय आ गया होगा ये नाम सुनते ही। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल डॉक्टर संजय आपसे करना चाहूंगी, भारत में आम की कुल कितनी तरह की वैरायटी है?
5: देखिए, भारत जो है विश्व में आम के एक प्रमुख उत्पादक देश है
1: जी।
5: यहाँ सबसे ज्यादा इसकी जैव विविधता पाई जाती है। करीब 1200 किस्में जो है विभिन्न प्रांतों में उगाई जा रही है और इनमें से करीब 3 दर्जन ऐसे किस्में हैं जो व्यावसायिक रूप से उनकी खेती की जाती है और ये केरल से लेकर जम्मू तक कम से कम 20 राज्यों में इसकी कमर्शियल खेती हो रही है। और ये एक तरह से कहें हमारा फल का जो बास्केट है उसमें हमारी देश की पहचान, आम उत्पादक हम लीडिंग प्रोड्यूसर हैं और करीब 24 से 28 मीट्रिक टन इसका उत्पादन सालाना होता है डिपेंडिंग ऑन ऑफ एंड ऑन ईयर। और इसमें से करीबन हम 5% जो विश्व के जो एक्सपोर्ट करते हैं करीबन 57 मिलियन US डॉलर का ये हमारे यहाँ से जाता है। ये ताजा फलों के रूप में जाता है और इसमें जो इसके पल्प है और भी अन्य उत्पाद है वो इत्यादि एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारे देश में एक मुख्य फल तो है ही। हमारे हर एक राज्य में, चाहे वो जगतिन क्षेत्र में हो, चाहे पूर्वी क्षेत्र में हो, चाहे वेस्टर्न में हो या नॉर्थ की हो, किस्मों का बहुत बड़ा विविधीकरण पाया जाता है जो उस क्षेत्र के हिसाब से वो प्रचलित भी है, उसमें स्वाद भी बहुत अच्छी चीज है और उसके हिसाब से जो कुछ अगेती हैं कुछ पचेती हैं और स्वाद के हिसाब से वो जानी जाती हैं और बाजार में आती हैं तब हमारे जो उपभोक्ता हैं उसका लुफ्त उठा पाते हैं और यहाँ हमारे देश जो है मतलब मैं कहूँ कि भारत में हम ढंग से खेती करें और अपनी किस्मों को इस तरह से उगाएं तो भारत में 6 महीने से 7 महीने तक हम ताजा फलों को ला सकते हैं और उसका लुफ्त उठा सकते हैं।
1: जी मैं डॉक्टर जयप्रकाश अब आपसे जानना चाहूंगी आजकल बाजार में कम जगह में ज्यादा फल देने वाले जो संकर किस्में हैं हाइब्रिड किस्में वो आ रही हैं तो किसानों के लिए इस समय सबसे बेहतरीन किस्म कौन सी है आम की?
3: अब जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम का जिक्र किया और कार्यक्रम में उन्होंने जिन किस्मों का जिक्र किया देखें तो पूरे भारत में अलग अलग तरह की किस्में लोकप्रिय हैं। तो वैज्ञानिकों ने पिछले 50-60 वर्षों में इन किस्मों को आपस में मिलाया है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लूं नीलम का जिक्र कि ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में होती है और दशहरी जो उत्तर भारत में एक बड़ी किस्म है बड़े क्षेत्रों में होती है। दोनों किस्मों को मिला के आम्रपाली और मल्लिका जैसी किस्में आई और आज की तारीख में करीब 2 लाख हेक्टेयर में दोनों किस्में फैली हैं और आज जब 30-40 साल हो गया इन संकर किस्मों को आम्रपाली मल्लिका को तब ये आपको देश में उपलब्ध है और मंडियों में मिल रहा है और इसके फल बड़े गुणवत्ता वाले हैं। यहाँ खास बात बताने वाली है कि जो कंज्यूमर है जो हमारा उपभोक्ता है वो चाहता है कि उसका जो पुराना टेस्ट है किस्मों का चाहे वो लंगड़ा में हो दशहरी में हो या बॉम्बे ग्रीन में हो नीलम में वो बना रहे
1: जी।
3: तो वैज्ञानिकों की भी सोच यही रही है कि इन किस्मों को मिलाकर तो दोनों के अच्छे गुण आ जाएं और दो अच्छे गुण मिलके और अच्छा गुण हो जाए कि मिठास भी बहुत अच्छी हो आकार बड़ा हो जाए और इनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो जाए। इन सारी चीजों को मिला के मल्लिका जैसी किस्म आई है और अगले स्तर पर जो रंगीन किस्में आई हैं जैसे पूसा अरुणिमा है पूसा लालिमा है अंबिका है अरुणिका है अर्का उदया है अर्का सुप्रभात है ये सब संकर किस्में हैं और आज ये सभी किस्में धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं और इन किस्मों की खास विशेषता है कि ये रंगीन तो हैं ही इनके अंदर जो सेल्फ लाइफ है जैसे फल को आप तोड़ के रखते हैं तो सामान्य तौर पे हम मानते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर फल की लाइफ खत्म हो जाएगी मतलब किसान के यहाँ तोड़ने से लेके उपभोक्ता के प्रयोग करने तक। लेकिन अगर आप हमको निर्यात में जाना है निर्यात के लिए जाना है तो ऐसी किस्में चाहिए और ये संकर किस्में उस दृष्टिकोण से उत्तम है और ये संकर किस्में आपको 10 से 12 दिन 15 दिन 18 दिन तक सामान्य तापक्रम पर बिना किसी रसायन के या बिना किसी अलग परिस्थिति के आराम से 12 से 15 दिन तक रुक रही हैं।
1: तो संकर किस्मों में ये सारे गुण हैं। जी तो अवनीश जी मैं अब आपसे जानना चाहूंगी आप कितने सालों से आम की खेती कर रहे हैं?
4: लगभग 1990 से हम जो है आम की खेती कर रहे हैं
1: जी।
4: जैसे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी ने अभी मन की बात में जिक्र किया है कि जैसे हम लंगड़ा चौसा दशहरी रामकेला और बम्बई ये सब उगाते हैं। हम परंपरागत खेती करते हैं इससे हमें बड़ा अच्छा लाभ होता है। इसमें जो खेत की जो मिट्टी है इसका स्वास्थ्य भी बना रहता है इसलिए हम जो प्राचीन काल से हमारे पूर्वज भी इस काम को करते चले आ रहे हैं।
1: जी संजय जी आपसे जानना चाहूंगी हम तरह तरह के नाम सुन रहे हैं आमों के ये बताइए कि कैसे आम का नामकरण किया जाता है किस्म के आधार पर या स्थान के आधार पर या भौगोलिक परिस्थिति या कोई और इसका पैमाना है?
5: जैसा कि मैंने बताया करीब 1200 किस्में भारतवर्ष में पाई जाती हैं और इसमें जो विभिन्नता है उस समय के जो आपने सुना होगा जो दरभंगा में जो लखी बाग एन अकबरी में उसका जिक्र है जहाँ पे 1,00,000 बनाए मैंने आम के पौध लगाए गए थे जो अकबर ने लगवाया था कि चूंकि उतना प्रचलित वो फल था उनके लिए तो इसलिए लोकप्रिय होने के कारण वहाँ पे जो हमारी किस्में हैं ये सारी सिडलिंग ओरिजिन के हैं और जिस तरह के जो इसमें बनता गया इसमें प्लस्ट्री कहते हैं चांस सिडलिंग कहते हैं जिसमें उस समय के उसको शेप साइज कलर और उसके सुगंध और जैसे इन्होंने कहा रामकेला ये एकदम अचार बनाने वाली किस्म है दशहरी है लंगड़ा है चौसा है हिमसागर है ये सारी जो है टेबल पर्पस जो खाने के लिए ताजे बन इसी तरह कुछ पल्पिंग की है जो प्रोसेसिंग में जाती है तोतापुरी है बादामी है हापुस जो अल्फांजो के नाम से जाना जाता है तो ये प्रोसेसिंग के लिए भी है ताजे खाने के लिए भी है और इसमें से जैसा डॉक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास कुछ अच्छी किस्में जिनकी भंडारण क्षमता कम मिठास खट्टा मीठा वाले आम होती हैं और भंडारण की क्षमता अच्छी होती है ये विदेशी बाजार में लंबे समय तक ठहर सकती हैं जहां 8 दिन 10 दिन 14 दिन की भंडारण क्षमता होती है उसके पकने के बाद तो इस तरह से दुरुस्त बाजारों को हम भेज सकते हैं और ऐसी ही किस्मों की अब मांग हो रही है। आप मध्य एशिया की बात करें बिम्स्टेक कंट्री की बात करें तो यहाँ ये जाती है जहाँ हमारा ही एशियन पॉपुलेशन खाता है इसको लेकिन जब हम विदेशों में भेजते हैं जापान हो अमेरिका हो यूरोपियन यूनियन कंट्री हो यूएसए हो तो यहाँ जहां उनके हिसाब से किस्मों को हम बढ़ाते हैं उनका क्षेत्रफल बढ़ता है और उसको जो है एक एजेंसी जो भारत से इनको निर्यात में सहयोग देती है ओपेडा का है कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इसका जो एक्सपोर्ट को देखती है ओपेडा कहते हैं और ये जो है फार्मर्स को रजिस्टर करती है उनके क्लस्टर से उनके जो फल जो होते हैं अच्छे गुणवत्ता वाले होते हैं उनको ये बताया जाता है कि आपका फार्म रजिस्टर्ड है आपको किस तरह के खाद पानी कीटनाशक इत्यादि का उपयोग करना है जिससे उसमें अंश बहुत कम मिले सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है फिर वो ग्रेड करते हैं फिर पूरी वैल्यू चेन के लोग लग जाते हैं जो तुड़ाई के बाद किस तरह से डिसैपिंग होती है एक पूरी प्रोटोकॉल होती है फिर उसके बाद उसमें एक ट्रीटमेंट की जाती है उसको कहते हैं वेपर हीट ट्रीटमेंट या हॉट वाटर ट्रीटमेंट या इरेडिएशन विभिन्न बाजारों के लिए जैसे जापान भेजना है तो इरेडिएशन कराना पड़ेगा जहां अमेरिका भेजना है तो वेपर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा तो इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है जो उन क्लस्टर्स में बनाई जाती है और यहाँ जब फलों को हम ट्रीट कर देते हैं उसमें ये देखा जाता है कि आपके देश से जब भी उत्पाद बाहर जा रहा है तो उसमें कोई कीट या रोग ना जाए
1: जी।
5: और इसलिए ये ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है जैसे फल मक्खी है और एक स्टोन वीविल होती है ये उसमें प्राय देखा गया कि अगर बाग को आप पुराना है उसमें कोई केयर नहीं करते हैं तो उसमें ये दिख जाती है तो उसको ये ट्रीट करने के बाद इसको फिर हम इसको ग्रेडिंग करते हैं पैकेजिंग होती है और इसकी पूरी कोल्ड चेन है दोनों माध्यम से जाती है हमारे यहाँ से वायु मार्ग से भी जाती है और समुद्री मार्ग से भी और ये सारी प्रोटोकॉल अब बना ली गई है जिसको हम करीब 30 दिन से ऊपर तक ले जाके दूरस्थ बाजारों को हम भेज सकते हैं
1: जी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि किसानों को आप कैसे एजुकेट करते हैं ताकि शुरुआत में ही जो फल है उसकी गुणवत्ता बनी रहे।
5: इसमें जैसा कि मैं बता रहा था कि जैसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने हमारे शोध संस्थान है पूसा संस्थान है लखनऊ में हमारा इंस्टीट्यूट है बैंगलोर में है जो आमों पे कार्य करता है क्षेत्र के हिसाब से इन्होंने एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस बनाई हुई है जिससे कि उस जगह की उसमें मृदा के हिसाब से जो उसमें गुणवत्ता है उसमें न्यूट्रिएंट्स है उसके आधार पर कितनी खाद देनी है कितना ऑर्गेनिक कार्बन होना है कौन से फल लगने से लेकर मैच्योर होने तक की उसमें जो दी जाती है वो सारी उसमें बताई जाती है। उस तरह में अगर कोई कीट लगे या रोग लगे तो उसका रोकथाम किस तरह से करें और इन समय की जो प्रणाली है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट ये प्रायः जो है ओपेडा इन्हीं हमसे लेता है और उस क्षेत्र चाहे वो गुजरात का हो चाहे महाराष्ट्र का हो रत्नागिरी का हो चाहे कृष्णगिरी है तमिलनाडु में वहां पे है आंध्र प्रदेश के लोग हैं सारे जगह जो है हम उस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं जिससे कि कोई भी कीटनाशक या केमिकल का अंश ना आए और गुणवत्ता वाले फल तैयार हो और उनको ये प्रशिक्षण हम लोग करते हैं वो हमें भी बताते हैं उनके द्वारा जो स्पॉन्सर्ड होता है
1: जी।
5: और किसान के समूह को हम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में एक तरह के किसान हैं जिससे कि हमें एक क्वांटिटी मिल सके जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके छिटपुट छिटपुट हम करके बहुत बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट नहीं जैसे कि आप जानो कि देश में कई मैंगो क्लस्टर हैं मलियाबाद है बनारस है भागलपुर है तो यहाँ इसी तरह मालदा आपने सुना होगा जो हमारे नॉर्थ और ईस्टर्न सेक्टर में है तो यहाँ से काफी आम बाहर जाता है और यहाँ उन किसानों को रजिस्ट्रेशन के बाद सारी उनको ट्रेनिंग होती है सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है उनकी सॉयल की जांच होती है सारी चीजें जब हो जाती हैं तब ओपेडा की एजेंसी जो उनके जो एजेंट होते हैं जो खरीदार होते हैं वो आते हैं उनको आधुनिक मशीन के द्वारा या लगे के द्वारा जिससे किसी चोट कम लगे फलों को तोड़ते हैं फिर उसकी प्रक्रिया जिसमें डिसैपिंग है उसको क्लीनिंग है उसको डिप करना पड़ता है उसको ट्रीटमेंट है उसके बाद जैसा कि मैंने बताया जो VHT वाटर हीट ट्रीटमेंट जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट है या इरेडिएशन वो कराते हैं फिर हर एक देश के हिसाब से उनके डब्बा का जो कहते हैं कोई 2.5 किलो का होता है कोई 5 किलो का है कोई 6.5 किलो का उस तरह से उसकी पैकेजिंग होती है एक स्टैंडर्ड होता है वो करने के बाद वो फिर कोल्ड चेन अगर हम बहुत जैसे यूरोपीय बाजार को भेजना हम शिप से नहीं भेज पाएंगे हम कम्पीट भी नहीं कर पाएंगे कि बहुत ज्यादा समय होगा सड़ जाएगा तो वहां जो वायु मार्ग से झुक जाता है तो उसको हम कोल्ड चेन के माध्यम से भेजते हैं जिससे कि वहां बाजार में पहुंचे और 2 दिन के बाद जब 1 दिन के बाद जैसे ही रिटेल में चेन मिल जाए तो वो ऐसी अवस्था में जाए कि जिससे कि ग्राहक इसको खरीद पाए और किसानों को मैं बताऊं इस साल जैसा देखा गया कि क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा बहुत अर्ली रेन्स आई और क्रॉप डैमेज बहुत हुआ लेकिन अब जो देखा जा रहा है कि इसलिए वजह कि हमारी घरेलू मांग भी बहुत ज्यादा है कीमतें भी बढ़ी हुई हैं किसानों को जो कीमत भी है इस साल बढ़िया मिल रहा है लेकिन एक जो एक्सपोर्टर्स थे जो हमारे जो मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं दुबई ओमान दोहा सऊदी अरेबिया कुवैत इनको जा रही थी वहां अब इस युद्ध के कारण चल रहा है करंट सिचुएशन उसमें नहीं जा पा रहा है तो हमें नए बाजार देखने होंगे
1: अब
5: हमें हाँ हमारे नेबरिंग कंट्री है या बांग्लादेश है नेपाल है श्रीलंका है मालदीव्स है हमें अल्टरनेट मार्केट हमेशा तैयार देखना है जहाँ एक्सपोर्ट में हम डोमिनेट करते हैं और सिंगापुर हांगकांग ये बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए निकल कर आया है
6: जी।
5: और ये जैसे मैं कहूँ कि किसानों को अच्छी कीमत दे पाया और उनके जो प्रयास थे उसको सफल बनाया
1: जी। जैसा कि हम बात कर रहे थे आम के नामकरण की कि इतनी सारी किस्में हैं उनका नाम किस आधार पर रखा जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर जयप्रकाश, आप आम्रपाली का जिक्र कर रहे थे।
7: आम्रपाली बहुत लोगों को नगर वधु का बारे में जानकारी होगी
6: जी।
7: और ये हमारी जो पुराना इतिहास है उससे जुड़ा हुआ है। आम्रपाली के पीछे की सोच थी कि आप देखें तो इसमें नीलम है, दशहरी है, तो दोनों को मिला के आम्रपाली बना
6: जी।
7: और ना तो नीलम को देखें तो दक्षिण भारत में है बिल्कुल, उसमें फल हर साल आता है
6: जी।
7: दशहरी बहुत अच्छा फल आता है, बहुत लोकप्रिय है, लेकिन समस्या क्या है वहाँ पर कि एक साल फल आता है एक साल नहीं आता। लेकिन जब आम्रपाली आई तो ये इसमें हर साल फल आता है
6: जी।
7: आज आम्रपाली का जो पौधा है वो करीब 50 साल का है, जो पहला पौधा आया हाइब्रिड 50 साल का है, पूसा कैंपस में है और उसमें अभी भी हर साल फल आता है। तो सबसे अच्छी अब रहे कि आम्रपाली क्यों रखा, उसके पीछे की सोच थी, नगर वधु के बारे में लोग जानते हैं कि जिसे हर घर में जा सकता है, तो सोच ये थी कि ये एक ऐसा पौधा है आम का, ऐसी वैरायटी है कि ये हर घर में जाएगी, इसलिए इसको आम्रपाली रखा गया। और उसके साथ में सोच ये भी थी कि चूंकि ये ड्वार्फ है, बौनी किस्म है, तो आम का जिक्र आता तो हम सोचते हैं कि 10 मीटर का होगा, 15 मीटर का होगा, इतनी जगह लेगा, लेकिन आम्रपाली का ऐसा है कि बहुत कम आकार है, तो अगर किसी के पास 2x2 मीटर की जगह है तो वो भी आम्रपाली लगाता है। और दिल्ली जैसे शहर में बहुत लोगों ने तो बड़े बड़े गमलों में लगा रखा है, जो बड़े बड़े कंटेनर्स आते हैं या पुराने टिन वाले हैं 4x4, मतलब आप मान के 24 इंच के जो गमले हैं उसमें भी लोगों ने आम्रपाली लगा रखा है, और उनको अगर 8-10 फल भी मिलता है तो आनंद की अनुभूति होती है
6: जी।
7: तो उस हिसाब से नाम सामान्य रूप से नामकरण की आज की प्रक्रिया है। कई किस्में हैं जैसे हिम सागर का आपने जिक्र किया, तो चूंकि ये सागर और हिम दोनों को टच करता था इसलिए हिम सागर रखा, तो स्थान के नाम पे भी है। अब जब हम रखते हैं कि पूसा लालिमा है
6: जी,
7: तो पूसा मान लो एक हाइब्रिड है पूसा लालिमा
6: जी,
7: तो इसमें पूसा हमारा इंस्टीट्यूट का नाम से जुड़ा हुआ, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूट की जो पैदाइश हुई वो पूसा से हुई, तो पूसा ब्रांड नेम हो गया। लालिमा इसलिए है क्योंकि वो जब फल पकता है तो बिल्कुल लालिमा लिए होता है
6: जी।
7: तो वो जो उसका देखे तो करेक्टर है,
6: गुण हो गया।
7: तो जो नाम जो है, नाम बहुत कुछ उसके गुणों को प्रकट करता है। जैसे आप पूसा अरुणिमा में जाएंगे तो उसके अरुणिमा में सोल्जर पे, जैसे अरुणिमा जो है वो सूरज के पर्यायवाची के रूप में आता है, तो वहां पर एक लाली सी विकसित होती है, उसको अरुणिमा कहा गया है। इस आकार से मल्लिका का है, तो मल्लिका का फल का आकार बहुत बड़ा है, तो उसके पीछे है कि भाई ये मल्लिका है, कि सारे फलों में सबसे बड़ा है तो ये मल्लिका जैसा है। तो इस तरह से मतलब गुड़ का जो है बहुत कुछ योगदान है नामकरण की प्रक्रिया में। अब पुरानी किस्में आई हैं उसके पीछे भी है नाम, कि किस स्थान पे हुआ, कौन सबसे पहले उसको आगे बढ़ाया, इसके आधार पे नाम रखा जाता है। लेकिन अब हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें है कि आप जिस संस्थान से किसी किस्म को विकसित कर रहे हैं उसका नाम आएगा, और उस किस्म से जुड़ा हुआ जो गुड़ है वो नाम में कहीं ना कहीं प्रकट हो, और नाम सुविधाजनक भी हो, जो सामान्य जन उसको आराम से समझ पाए और ले पाए।
1: यहाँ आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आमतौर पर हम सुनते हैं कि फलों, सब्जियों, फूलों के प्रचलित नाम अलग होते हैं और वैज्ञानिक नाम अलग होते हैं, इसके पीछे क्या वजह है?
7: इसके पीछे की वजह है कि वैज्ञानिक नाम ऐसा है कि आप पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए, अगर आपने मैंजीफेरा इंडिका बोला तो सबको समझ में आएगा कि आप मैंगो के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मैंगो तो इंग्लिश नाम हुआ, हम आम बोलते हैं, कहीं कोई अमिया बोलता है, तो हमारे देश में ही आम को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अल्फांजो किस्म है, पूरी दुनिया अल्फांजो जानती है
6: जी।
7: लेकिन अगर आप हापुस बोलोगे, जितने बाजार में जाएंगे, अगर आप जहाँ मंडियां हैं वहां नाम लेंगे तो हापुस आम है
6: जी।
7: और हापुस कई जगह ब्रांड के रूप में चलता है, लेकिन जो लिटरेचर है, स्टैंडर्ड लिटरेचर है, वहां ही अल्फांजो है। तो जो बोटेनिकल नेम, वैज्ञानिक नाम रखने की अवधारणा हुई पिछले 300 सालों में विकसित हुई, लिनियस के बाद काफी आगे बढ़ी तेजी से, तो था कि पूरी दुनिया में एक ही नाम से इसको हर कोई जाने, तो आइडेंटिटी की कोई समस्या ना आए कि आप किसी और नाम से बुलाएं, अगला किसी और नाम से बुलाएं, ये ठीक हो जाए
1: जी। डॉक्टर जयप्रकाश, ये भी बताएं कि बदलते हुए मौसम में ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो पेड़ पौधों पर भी पड़ रहा है, ऐसे में आम का जो बौर है अगर समय से पहले वो झड़ जाता है तो फिर पैदावार कम होगी, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या वैज्ञानिक स्तर पर किसी तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, किसानों की कैसे मदद कर रहे हैं?
7: निश्चित रूप से आजकल देखें तो भारतीय मौसम का जो फोरकास्ट है वो हर हफ्ते का आता है, 15 दिन का भी आता है, और जितने भी हमारे किसान और किसानों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो प्रसार के हों या वैज्ञानिक हों ये सभी इस मौसम का जो भी भविष्यवाणी है उसको फॉलो करते हैं। जो नहीं फॉलो करेगा वो आज की तारीख में काफी नुकसान में रहेगा। और इस साल ऐसा हुआ कि जब फरवरी से मार्च के हम पहले हफ्ते में आए तो तापक्रम बढ़ रहा था, जैसे ही दूसरे हफ्ते में मार्च में आए बारिश शुरू हो गई और तापक्रम कम हो गया, जिसके चलते एंथ्रेक्नोज, पाउडू मिल्ड्यू, ब्लाजम ब्लाइट, तीन तो बीमारियां आ गई। उसके बाद मैंगो हापर बढ़ गया और बीच में एक गुम्मा रोग आता है जिसको कहते हैं फ्लोरल मालफॉर्म। जब फूल आता है तो फूल पूरा विकसित नहीं होता, वो छोटा छोटा होके ऐसे गुच्छा जैसे बन जाता है। तो वो गुच्छा बन जाने से उसमें नर का हिस्सा बहुत बढ़ जाता है तो फल कम लगेंगे। आपको लगा फूल तो बहुत अच्छा है पर फल कम लगा, इधर ये तीन बीमारियां आ गई। ऐसे में हमारी सलाह हमेशा ही रहती है कि मान लीजिए जब हमको लग रहा है कि एक हफ्ते बाद बारिश का संभावना है और उसके बाद तीन चार दिन तक लगातार मौसम ऐसा ही रहेगा, तो हम पहले से ही कुछ ना कुछ छिड़काव के लिए, रासायनिक छिड़काव क्या हो सकता है उसको करते हैं। गुम्मा रोग आ गया तो जैसे ही आया है उसके इन्फ्लोरेसेंस को सिकेटियर से काट कर सबको अलग करके कहीं नीचे दया के मिट्टी में दूर दबा देते हैं, नहीं तो उसके अंदर मैंगो हॉपर जो कीड़ा है वो बैठेगा, अपनी कॉलोनी बनाएगा, उनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो आगे चल के जो फल लगा भी है उसका भी इन्फ्लोरेसेंस से वो पेनिकल से रस को चूस लेगा, फल गिर जाता है। तो इस तरह की सामान्य जानकारियां अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी भी जाती है
6: जी।
7: और हर ज्यादातर संस्थानों के अपने भी कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके भी मौसम के आधार पे प्रेडिक्शन किया जाता है। और जो MIDS है जो भारत सरकार की स्कीम है, अलग हर राज्य में चलती है, उसके थ्रू भी अलग अलग ट्रेनिंग की जाती है कि अगर आपको इस तरह का मौसम लग रहा है तो आप इन इन केमिकल्स का छिड़काव करें। हालांकि उसका समय और मात्रा क्षेत्र के अनुसार बदलती है, जैसे फूल आने की प्रक्रिया अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में तो वो नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाती है। हम उत्तर भारत में आएंगे ये प्रक्रिया फरवरी मार्च की है
6: जी।
7: पूर्वी भारत में वो प्रक्रिया जनवरी और फरवरी की है। तो ये अलग अलग मौसम के अनुसार होता है, लेकिन सारे क्षेत्रों में इसके बारे में बराबर जानकारी दी जाती है
6: जी। अवनीश जी, मैं अब आपसे आपके काम करने के तरीके के बारे में जानना चाहूंगी कि कितनी मेहनत लगती है पूरी फसल तैयार करने में। आपका काम कब से शुरू होता है, जब एक फसल सीजन जिसे जाता है उसमें?
4: जैसे ही आपने पूछा कि मुझसे जो ये फसल कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे ही हमारे आम पक जाते हैं
6: जी,
4: उसके बाद हम जो है आम के पेड़ के चारों ओर थाला बनाते हैं। उस थाले के अंदर जो है हम उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको देते हैं, जिससे वो फिर से मिट्टी से ढक देते हैं। जैसे हमने उसमें थाला बनाया लगभग 6 इंच गहरा बनाया और उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले और उसके ऊपर फिर हमने मिट्टी से उसे ढक दिया। इसके बाद बरसात स्टार्ट हो जाती है, बरसात से जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे पौधे की जड़ें उसे अवशोषित कर लेती है। उसके बाद हम जो है अक्टूबर नवंबर में फिर हम जो है पौधों की खुदाई करवाते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं, जैसे मिट्टी में जो कीड़े होंगे वो सब जो है गर्मी के कारण, ठंड के कारण जो होते हैं वो सब मर जाते हैं, जैसे ऊपर उसको करते हैं, और जो खरपतवार है वो भी कम हो जाती है। इसके बाद हमारा जो जनवरी का महीना आता है, जनवरी में बड़े देखभाल करनी पड़ती है। जैसे ही कोई नया बोर आया उस बोर को थोड़ा सा तोड़ देते हैं हाथ से, जिससे कि जो फरवरी का महीना होगा फरवरी में उस पे अच्छी तरह से फल आ सके
6: जी।
4: इसके बाद हम जो है कीड़ों की देखभाल डेली करनी होती है फरवरी मार्च में। यहाँ कीटनाशक के हमें दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है और जितने भी होंगे हमारे जो हर्बिसाइड का भी यूज करना होता है, क्योंकि हर्बिसाइड भी जो उस समय जो बहुत ज्यादा मार्च का महीना हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा जो है बढ़ता चला जाता है तो खरपतवार भी पौधे के नीचे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी हम जो है खरपतवार की खुदाई करवाते हैं और कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद जैसे ही फल लग जाता है, तो जब फल लगभग 50 ग्राम या 60 ग्राम के आसपास हो जाता है तो हम उस फल पर बैगिंग करते हैं। बैगिंग से ये होता है कि जो कीट पतंगे होते हैं वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते, ये हम प्रक्रिया करते हैं
6: जी,
4: चलता रहता है हमारा।
6: और फिर कब फसल मिलती है आपको?
4: हमें जो फसल जो लगभग जून से स्टार्ट हो जाती है, मई के लास्ट से स्टार्ट हो जाती है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आजकल जो नए नए हाइब्रिड किस्में चल रही है इनको भी हम लगा रखे हैं, हमने ये लगभग अगस्त तक चलती है हमारी, इसलिए हमारे जो मई के लास्ट से लेकर के अगस्त के महीने तक हमारा ये व्यवसाय चलता है
6: जी। पहले बारिश का या सर्दी का गर्मी का एक अंदाजा होता था, हम मौसम का अंदाजा लगा सकते थे। आजकल मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे हैं, पता भी नहीं चलता और तेज बारिश होती है, आंधी भी है। ऐसे में अगर आपको कभी ऐसा लगे कि समय से पहले फसल को तोड़ना पड़ रहा है नहीं तो वो बारिश में खराब हो जाएगी, तब किस तरह से आप मैनेज करते हैं सारी चीजें, मैं ये जानना चाहूंगी।
4: इसके लिए ना आजकल जो है ना एक मौसम पूर्व अनुमान का वो दिया जाता है, हर एक अलग अलग जो सेक्टर बने हुए हैं सरकार ने बनाए हुए हैं उनसे जुड़े हुए हैं किसान लोग भी, उसमें मैसेज आता रहता है कि जो इस दिन बारिश होने की संभावना है या फिर जो है तूफान आएगा, तो इससे हम सचेत हो जाते हैं
6: जी।
4: हमें पता है कि जो है बारिश होनी है तो हम अपनी फसल

0: डाटा तुड़ाई नहीं करेंगे
1: जी,
0: जिससे कि हमें नुकसान होने से बच जाता है। तो मौसम विभाग हमारे लिए काफी सहयोग करता है और हमारी फसल की सुरक्षा होती है,
1: सुरक्षा रहती है जी। तो अवनीश जी, आपसे ही बातचीत जारी रखना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप जब फसल तोड़ते हैं उसके बाद उसे जो अगला पड़ाव आपका है वो क्या होता है?
0: फसल तोड़ने के बाद हम उसके जो छटाई करते हैं, जैसे उसमें कुछ आम जो खराब निकल जाते हैं उन खराब आम को अलग रखते हैं, जो छोटे आम होते हैं उसको अलग रखते हैं, वो जो फर्स्ट क्वालिटी के होते हैं उस साइज को अलग रखते हैं, उनकी पैकेजिंग करते हैं, पैकेजिंग करके फिर उसे मार्केट में लेकर जाते हैं, जहां हमारे मार्केट में जो मंडियां बनी हुई हैं हम वहां जा करके वो ठेकेदार होते हैं, हम उनके यहां सप्लाई करते हैं उसको, जिससे हमारा मार्केट से में भी माल उठ जाता है
1: जी। और ये भी जानना चाहूंगे कि क्या हमेशा एक ही कोई किस्म आप उगाते हैं या बदल बदल कर खेती करते हैं?
0: जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो है मई से लेकर के अगस्त तक ये सब प्रक्रिया चलती है हमारी, जिसमें हमें जो उत्पादन मिलता है इसमें कई सारी किस्में होती हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हाइब्रिड वेराइटीज है, हाइब्रिड वेराइटीज को भी हमें यूज करना होगा, क्योंकि जैसे समय बदलता चला जा रहा है जो हमारी परंपरागत जो हमारी जो फसलें थी उससे कम उत्पादन हुआ और वो ज्यादा जगह घेरती है, हाइब्रिड वैरायटीज कम जगह घेरती है, इसके लिए हमें समय के अनुसार बदलना है। हम बदले और हमने हाइब्रिड वैरायटीज है पूसा की, मैंने सभी वैरायटीज लगाई हुई हैं, जय लखनऊ की कुछ वैरायटीज लगाई हुई हैं और इनसे हमें मार्केट में अच्छा दाम मिलता है
1: जी। मैं डॉक्टर संजय आपसे अब जानना चाहूंगी, ऑर्गेनिक तरीके जो हैं आम उत्पादन के, उनको बढ़ाने के लिए, जैसा कि हमने इनसे भी सुना कि किसान जो है वो कई किस्में जो हैं वो उगाते भी हैं, नई नई तकनीक भी अपनाते हैं, लेकिन कीटनाशकों का प्रयोग भी लगातार करते रहना पड़ता है, तो किसानों के लिए क्या गाइडलाइन आपकी तरफ से होती है और क्या इसका कोई विकल्प भी है?
2: जैसा कि आपने बताया कि प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती, ये दोनों पद्धतियां जो इसकी संस्थान, एक तो फरीदाबाद में जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो एक तरह से चिन्हित करता है कि किन क्लस्टर्स में किस तरह की पद्धति, और उसमें किसान रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन, जाके वहाँ पे एग्रीस्टैक में रजिस्टर करते हैं कि हमारे पास इतनी आम की खिले, इतनी एकड़ की ये किस्म है, और वहां जब ये रजिस्टर कर जाता है, जब उसकी सर्टिफाइड हो जाती है फार्म, तब वो सारी जो ऑर्गेनिक खेती की पद्धति होती है उनके इनपुट्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग है, जीवामृत है, घनामृत है, निमा है, ब्रह्मास्त्र है, इस सारी चीजें वो यूज करते हैं, और इसमें देखना ये होता है कि अगर वो ऑन फार्म कर रहा है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं, वहां जितनी पत्तियां गिरती हैं उनको वो बर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करता है, उनकी खाद बनवाता है, देसी गाय रखता है, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, वो सारी पद्धति पूरी तरह बनाई गई है, और इसमें रुझान किसानों का भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनसे केमिकल जितना कम उपयोग हो वैसे उत्पाद की विदेशों में बहुत ज्यादा मांग है, और वहां किसान इस तरह की पद्धतियों को अपना रहा है और इस तरह के क्लस्टर और समूह बन रहे हैं जो ऑर्गेनिक उत्पाद पे ही फोकस कर रहे हैं, चाहे वो नीम का ऑयल हो, जैसे कि उसके अलाउड खाद और उर्वरक हैं वो पढ़ते हैं, प्लांट प्रोटेक्शन में भी वो एकीकृत जो विधि है आईपीएम मॉड्यूल है उसको करते हैं, और नीम बेस्ड पेस्टिसाइड है उसी को यूज करते हैं जिससे कि उसमें अंश भी ना बने। यहां मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि अब किसानों में जैसे भारत सरकार ने किया है जीआई जियोलॉजिकल इंडिकेशन वाले आम है, ये वैसे देसी किस्म है जो क्षेत्रीय में जहां सदियों से उगाए जा रहे थे और उनके एक विशेष स्वाद होता है, एक उनका कलर या आकार होता है जिसकी मांग जो है विदेशों में बहुत होती है, ऐसे उत्पाद जो है वो करीबन उसको 18 साल तक एक बार जब जीआई सर्टिफिकेशन हो जाता है तो ऐसे उत्पाद जब बाजारों में जाते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों में है तो उसको 20-30% एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है, और यहाँ जैसा कि आप जानते होंगे जैसे अल्फांसो हाफूज डॉक्टर साहब बता रहे थे, गिर केसर, बैगनपल्ली, मलियाबाद, दशहरी है, हिमसागर वेस्ट बंगाल में काफी चलता है, भागलपुर जर्दालू, बनारसी लंगड़ा है, रतौल लक्ष्मण भोग वेस्ट बंगाल का है, ये वो जगह वो डिस्ट्रिक्ट चिन्हित कहेंगे जहां से ये उत्पाद अगर निकले तो उसे जीआई टैग मिलेगा और करीब 18 साल तक के लिए प्रोटेक्शन मिलता है कि वहां के किसान को प्रीमियम प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में मिले, एक्सपोर्ट में भी इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये प्योर देसी किस्में होती हैं जो उस क्षेत्र से आ रही है जहां से जैसे बासमती में जाना जाता है उनकी चिन्हित डिस्ट्रिक्ट होती है, जनपद उनके डिस्ट्रिक्ट चाहे राज्यों में हो चाहे डिस्ट्रिक्ट उनके फिक्स रहते हैं तो वहीं से उत्पाद आते हैं, तो वैसे किसान इसे बहुत ज्यादा जो है ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग में ले जाते हैं जिससे कि इसमें और बढ़िया खुशबू हो या कलर हो या स्वाद है वो मिले और विदेशी बाजार में विशेष मांग रहती है तो इसे बढ़ाना चाहिए किसानों को। एक सवाल जो आप बता रहे थे कि क्या करें जब मौसम बदल रहा है और इस तरह की जो कभी असामयिक बरसात हो गई, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इस समय किसानों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। हर एक किसान को मैं हमेशा कहता हूं

0: एक किसी जैसे दशहरी पे निर्वतना उसे जब लगाना हो, जैसे कि उन्होंने बताया हमारे साथी ने कि ये चार से पांच किस्मों का समूह लगाते हैं, इसमें होता क्या है, कुछ अगैती होती है, कुछ मध्य वाली होती है पकने वाली, और कुछ पछैती होती है, तो इससे जो मौसम की मार है उसे बच पाता है। और उसके पास एक और विकल्प होता है कि अगर इसमें उत्पाद नहीं मिला तो बासिक की दो तीन किस्में हैं जिसमें अच्छे उत्पाद मिलेंगे
1: जी।
0: और एक और मैंने बताया कि उसका उपयोग के हिसाब से, हम ताजा फल खाते हैं, कुछ हमें एक्सपोर्ट भी करना है, जब एक्सपोर्ट वाली प्रायः किस्में हमने देखा कि वो बहुत लेट पकती है, जुलाई अगस्त की रहती है, और उसमें जैसे रेशा कम होता है, भंडारण क्षमता अच्छी होती है, मध्यम मिठास की होती है, खट्टा मीठा टेस्ट होता है, अच्छा रंगीन उस पे कलर होता है। तो इस तरह की जो किस्में जो लगा रहे हैं किसान, अब आगे बढ़ रहा है उसे सिर्फ हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशी बाजार में भी, हमें इसे आगे बढ़ाना है और किसानों को अपने देसी कंजप्शन के साथ हमारे जो आसपास के देश है उनको देने के लिए, और विदेशी बड़े मार्केट है उनके लिए भी देखना है, और उस तरह की हमें उत्पाद देना है जो वहाँ खरा उतरे और किसानों को अच्छा पैसा भी दे
1: जी। हमें नए बाजार भी तलाश करने हैं और जो बाजार पहले से हमारे पास हैं उनके अनुसार हमें अपनी गुणवत्ता भी बनाए रखनी है। एक बात मैं और आपसे जानना चाहूंगी, निर्यात का जो मुख्य कारक है वो क्या है? हम मौसम के अनुसार अपना फल तो भेज रहे हैं, लेकिन क्या जिस देश में हम भेज रहे हैं हम उस देश की भौगोलिक परिस्थिति का भी ध्यान रखते हैं, वहाँ के तापमान के अनुसार करते हैं हम निर्यात?
0: देखिए, जैसा कि आम जो है ये तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में हम उगा रहे हैं, हमारे को एडवांटेज मिलता है कि हमारा आम बहुत मीठा होता है, खट्टा मीठा होगा, कलर अलग होंगे, छोटा बड़ा साइज होगा
1: जी।
0: लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, अल्फांसो विश्व प्रसिद्ध है, रतौल है हमारे यहाँ से जाता है, लंगड़ा चौसा दशहरी केसर है, बैगन पल्ली है, तोता पर ये इत्यादि जाती है, इन सभी में देखा गया है कि थोड़ी इसमें भंडारण क्षमता इनकी अच्छी होती है, पहला मांग वो है। दूसरा है ये वहाँ किस तरह के पॉपुलेशन रहती है, जहाँ एशियन पॉपुलेशन है वो मीठा आम खाना चाहते हैं, जो विदेशी लोग हैं यूरोपीय लोग हैं या जापानी या अमेरिकन हैं वो मध्यम मीठा चाहिए, वो खट्टा भी चाहिए। तो इस तरह के जो डिमांड है ये इस तरह के जो क्लस्टर बनाए जाते हैं जहाँ इस तरह के किस्मों को उगाना है जो वहाँ के मांग को मीट कर सके, डिमांड को। तो इसी तरह से जो पूसा या IHR बैंगलोर या CISH लखनऊ में है, जहाँ पे आम की वैरायटी जो नेक्स्ट जनरेशन आम है जो एक्सपोर्ट में भी हमारे को अच्छा पैसा दे, देसी किस्मों को तो हम खाएंगे
1: जी,
0: हाइब्रिड भी आएंगे जो सघन बागवानी में हेल्प करें, उसको ड्रिप पे ले जाएं, उसको फर्टिगेशन पे रखें, मल्चिंग करें, बैगिंग करें इत्यादि से, जो पूरी प्रोटोकॉल जो है सेफ और पेस्टिसाइड मुक्त उत्पादन होगा, तो आपको अच्छा वो कीमत भी देगा और किसान के पूरे वैल्यू चेन में जो लोग हैं, जो उत्पादक है, जो भंडारण करता है, एग्रीगेशन करता है, जो कोल्ड चेन से ले जाता है, रिटेल में ले जाता है, एक्सपोर्ट करता है, ये सारे जो लोग जुड़े हैं उन सभी को तभी अच्छा मतलब कीमत मिलेगा जब हम सारे लोग एक साथ काम करें। और एक दो वर्ष पहले से ये हो जाता है कि यहाँ इस साल का उत्पाद आएगा, हम इन बाजारों को तलाशेंगे और उनको देखेंगे, इस तरह से होता है
1: जी। अब बहुत ही रोचक बातचीत चल रही है और सच में हमने अपनी प्लेट में सजे हुए आम को कभी भी इतने नजदीक से नहीं जाना जितना आज आप सबकी बातचीत के बाद हम समझ पाएंगे। तो डॉक्टर जयप्रकाश, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, हमारा प्रोसेसिंग उद्योग जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर आम की फसल पूरी तरह पककर तैयार नहीं होती तो पल्प, जूस, अचार बनाने जैसी जो हमारी और विधियां हैं उनसे किसानों को लाभ मिल पाए, इसका ध्यान कैसे रखते हैं आप?
2: इसका ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ जहाँ जहाँ पर आपको उद्यान विभाग होगा वहाँ पे उसके साथ में एक विभाग और रहता है जो तुड़ाई उपरांत और प्रोसेसिंग का ध्यान रखता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि राज्य सरकारों के स्तर पे भी फूड प्रोसेसिंग का, भारत सरकार के स्तर पे भी मंत्रालय है और राज्य सरकार के स्तर पे इनके अलग अलग डायरेक्टरेट हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और हम सामान्य रूप से जब भी किसानों से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि आम को आपको हर अवस्था में प्रयोग करना है
1: जी।
2: जो आम बहुत छोटा सा होता है जिसे हम टिकोरा कहते हैं, टिकोला कहते हैं, जब मुश्किल से 15 ग्राम का होता, अगर वो गिरता है तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते, उससे भी मैंजीफेरिन नामक रसायन एक होता है उसके अंदर में, एंटीऑक्सीडेंट्स है, उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सकता है, उसको सुखा के अमचूर बनता है, उसके बाद जब आम गिरता तो उसका भी अमचूर बनता था परंपरागत रूप से। गांव में पहले घर में बड़ी माताएं बहनें बनाती थी, आज भी बहुत लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उसी को अब हम व्यवसाय के रूप में लेके आ रहे हैं। और जैसे जैसे आपका आम बड़ा होगा, तो आम जब आपका हो गया 60 से 70 दिन का, 80 दिन का, जब उसमें गुठली बन जाती है तब अवस्था होती है अचार की। जैसे पन्ना बहुत लोग पीते, जब गर्मी बढ़ती है तो आम पन्ना बहुत एक लोकप्रिय वो कच्चे आम का ही होता है और उसी कच्चे आम से आगे आप जाएंगे अचार पे जाएंगे। लेकिन जैसे तोतापरी किस्म देखें, मल्लिका देखें, इन किस्मों का काफी प्रयोग, खास करके तोतापरी का प्रोसेसिंग में बहुत उपयोग किया था। जो पल्पिंग इंडस्ट्री है वो हमारा सबसे बड़ा स्रोत है कि जो हमारे किसानों के फल हैं उनको ऑब्जर्व करने का, और वो इंडस्ट्री के माध्यम से होता है। और उस दिशा में भी किस्में विकसित की जा रही हैं और किस्में आई हैं। जैसे मैंने कहा कि मल्लिका का जिक्र किया, मल्लिका आप फ्रेश भी खा सकते हो और पल्प रिकवरी उसकी बहुत अच्छी है, 75-80% तक की पल्प रिकवरी, उसकी गुठली बहुत पतली सी होती है। तोतापरी में भी यही खासियत है, पैदावार अच्छी है और पल्प रिकवरी अच्छी है, तो वहां पर प्रयोग है। एक बार जब आप उससे आगे बढ़ते हैं तो आप जैम कैसे बना सकते हैं और मिक्स्ड फ्रूट मिक्स जैम में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। जितना हम फ्रेश आम का प्रयोग करते हैं उससे ज्यादा कहीं हम प्रोसेसिंग का प्रयोग करते हैं। पिछले कुछ सालों में समस्या आई थी खास करके आंध्रा में, क्योंकि फल बहुत आ गए थे और पल्पिंग इंडस्ट्री के पास स्टोर करने की क्षमता नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा रेट कम मिला था। लेकिन इस साल ये हालत काफी बेहतर है क्योंकि फसल थोड़ी सी कमजोर है, जिसके चलते ये सारे फलों का दाम अच्छा मिल रहा है और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप कर रही है। और हमें व्यवसायिक रूप से तो करना ही करना चाहिए, हमें एक समूह के रूप में, एक व्यक्ति और परिवार के रूप में भी आम का कुछ हिस्सा अपने प्रयोग में, चाहे अचार के रूप में करें, खटाई के रूप में करें, खुद भी बनाएं। इससे क्या होता है कि अल्टीमेटली जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका कुछ ना कुछ लागत किसान को मिलेगा, नहीं तो आंधी आई तमाम फल गिर गए
1: जी।
2: अब वो अचार में नहीं जा सकता है, किसी और काम में नहीं जा सकता है, लेकिन उसको काट के सुखा के उसका खटाई बन सकता है, उसका अमचूर बन सकता है, अलग अलग मसालों में प्रयोग हो सकता है। तो इसको हम एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनता है गांव के रूप में, कुछ महिलाओं का समूह मिलाकर इस स्तर पे भी काम किया जा रहा है, लोग करते हैं और इसको और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है
1: जी। यानी आम को भी अगर हम अलग अलग स्वरूप में इस्तेमाल करेंगे तब भी उसका लाभ किसानों तक पहुंचेगा
2: निश्चित रूप
1: जी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि वैज्ञानिकों की जो लैब होती है उसमें जो रिसर्च चल रही होती है और किसान के खेत के बीच बहुत अंतर होता है, लेकिन आप ये जो दूरी है इसे कैसे कम रखते हैं, कैसे किसानों से सीधा संपर्क करते हैं या अपनी समस्याएं लेकर वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं, कैसे समाधान उन्हें मिल सकता है?
2: तीन चार रास्ते हैं, तीनों चारों पे काम होता है, पैरेलल रास्ते हैं। जैसे हमारी कोई नई किस्म आई, नई किस्म जब भी आती है तो हम उसके लिए अपनी फील्ड पर, मान लीजिए हमारा कोई आम की नई किस्म है, हमने मैंगो फील्ड डे बनाया, जब फील्ड डे बनाते हैं तो उसमें हम किसानों को भी बुलाते हैं
1: जी,
2: उस किस्म के बारे में बताते हैं। उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर एक्सपोर्ट करने लायक वैरायटी तो उनको भी बुलाते हैं। जो नर्सरी का योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बड़े स्तर पर पौधों का जो निर्माण और उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है वो नर्सरी के माध्यम से होती है, हम उनको भी बुलाते हैं ताकि सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आए और वहां से जो जिसके हिस्से का काम हो वो पा जाए
1: जी।
2: इसके अलावा अलग अलग निजी क्षेत्रों को हम लाइसेंस भी देते हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट हैं उनको नई किस्में उपलब्ध कराते हैं, और बीच बीच में हमारे प्रशिक्षण चलते हैं, प्रशिक्षण डायरेक्ट किसानों का भी होता है और एक ट्रेनर्स ट्रेनिंग होता है
1: जी।
2: जैसे जो राज्य सरकार के स्तर पर अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, डायरेक्ट किसानों से जुड़े हैं, वो आते हैं हमारे स्तर पर, हम उनको ट्रेन करते हैं और वो अपने स्तर पर बहुत बड़े समूह को फिर ट्रेनिंग दे पाते हैं, और इन टेक्नोलॉजी को और पौधों को दोनों को हम किसानों के स्तर तक ले जाते हैं। माध्यम उसमें आपको कृषि विज्ञान केंद्र भी रहता है, जो राज्य सरकार की प्रसार सेवाएं हैं, डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू भी होता है, और कुछ किसान बहुत जागरूक होते हैं, वो स्वयं भी काफी सक्रिय होते हैं और उनके माध्यम से उनको काफी मदद मिलती है, क्योंकि कोई नई वैरायटी आप कहो कि आप 10 एकड़ लगा लो, कोई नहीं लगाता, अगर किसी एक किसान ने 100 पौधा लगाया उसको देख के हो सकता है कि 5,000-10,000 किसान प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस मॉडल को अपनाते हैं
1: जी। मैं अब अवनीश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, देश भर में जब आम का मौसम होता है तब मैंगो फेस्टिवल होते हैं, आम महोत्सव होते हैं, अलग अलग आयोजन होते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारी किस्में हमें चखने को मिलती हैं। एक बात मैं अक्सर बुजुर्गों से ये सुनती हूं कि फल में अब पहले जैसी खुशबू नहीं रही, मिठास तो कुछ कुछ फलों में ज्यादा है, लेकिन कहते हैं कि पहले जैसी महक नहीं है, तो आप इसकी वजह क्या है, क्या कहेंगे? क्या फल पहले से खराब हो गया है या गुणवत्ता बदली है या फिर अलग किस्म है? इसलिए
3: देखिए जो है पौधा तो वही है जो अब से जो है 200 साल पहले 300 साल पहले थे जो पौधे, आज भी पौधे वही हैं, लेकिन जो हमारा वातावरण में चेंज आ रहा है, इस वातावरण में चेंज के कारण हमारे जो छोटे छोटे पहले देखा होगा जब पशु ये पक्षी हुआ करते थे, छोटे छोटे कीड़े हुआ करते थे तो उनको पक्षियां खा जाते थे
1: जी,
3: से फल को नुकसान नहीं होता था, अब पक्षी भी बहुत कम हो गए हैं, हम अलग अलग पेस्टिसाइड यूज करते हैं, उस पेस्टिसाइड के कारण जो छोटा सा इंसेक्ट होगा उस पेस्टिसाइड के यूज से वो मरा, उसे पक्षी खाता है तो पक्षी को भी वो बीमारी हो जाती है, इस कारण हमारे अलग अलग जितने भी इंसेक्टिसाइड होते हैं ये लगातार हम दवाओं का प्रयोग करते हैं और इससे हमारे फलों की गुणवत्ता में भी कमी आई है,
1: कमी आती है।
3: इनका मेन कारण है कि हम जो है पेस्टिसाइड यूज करते ज्यादा
1: जी, वो करने पड़ते हैं,
3: वो करने पड़ते हैं, नहीं करेंगे तो फिर जो है फल पैदा नहीं होगा।
1: हम इस तरह की शिकायतें भी आमतौर पर सुनते हैं कि आम खाने से चेहरे पर कहीं दाना हो गया, या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहले आम को पानी में भिगो कर रखिए, नहीं तो जो गर्मी होगी वो आपको नुकसान करेगी। तो सही तरीका क्या है आम को खाने का, ये आप बताएं।
3: सही तरीका है कि जो पेड़ की जो डाल का जो आम होगा वो खाना है, लेकिन हर सभी के पास जो है बाग नहीं है, हर सभी के पास ये नहीं है। अगर पाल का भी आम है तो उसे हम लगभग 4 या 5 घंटे तक पानी में भिगोएं, उसके बाद 1 घंटे बाद पानी से निकालने के बाद 1 घंटे बाद उसको खाया जाए तो उसमें टेस्ट आ जाता है
1: जी। और वो उसके ऊपर अगर कुछ छिड़काव किया गया है कुछ है वो भी धुल जाए,
3: वो भी सब धुल जाता है
1: जी। डॉक्टर संजय सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
0: जैसा कि अभी पूरी चर्चा में बात चल रही थी कि अगर आम को अगर बढ़ाना है और ये हमारी देश की पहचान है तो किसानों को वैज्ञानिक पद्धति, चाहे वो जैविक करे, चाहे नेचुरल फार्मिंग करे, चाहे वो हाईटेक हॉर्टिकल्चर करे
1: जी।
0: अब तो जैसे जापानी लोग हैं वो तो रोटेटेड कल्टीवेशन के अंदर ले गए कि जिसे बिल्कुल कंट्रोल कंडीशन में जो आम को जब चाहे साल के उसमें पैदा कर लेते हैं, तो किसी को भी अगर अपनाते हैं तो वहाँ साइंस लेड जो हम कहते हैं तकनीक है
1: जी।
0: जो प्रोवाइड है, जो हमारे जो रिसर्च संस्थान है वो दे रहे हैं, चाहे वैज्ञानिक सलाह पे कर रहे हैं, तो समय आ गया है कि वो वैज्ञानिक सलाह के साथ और हमें सम्मिलित होना पड़ेगा, एक साथ समूह बनाना पड़ेगा। छिटपुट छिटपुट जो है वो आप अपने घर के लिए, साथ के बाजार के लिए कर सकते हैं, लेकिन उससे लेकर आप बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। तीसरी बात यह है कि जब FPO बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं या प्रोड्यूसर कंपनी बनाते हैं, तो किसानों को भी चाहे वो खाद खरीदे, चाहे कीटनाशक खरीदे, चाहे ऑर्गेनिक में करें, इनपुट लेने में भी कीमत में बहुत कमी मिलती है कि बल्क परचेस करते हैं, और जब उसके विपणन में भी जाते हैं, जब उसको तोड़ने के बाद आप मार्केट में बेचते हैं किसी भी समूह को, चाहे रिटेल चेन वाले हों, चाहे वो बड़े ट्रेडर्स हों, तो वहां भी कीमतों पे आपका से रहता है कि आप प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत हद तक देखा गया है अंगूर के व्यापार में या उसके उत्पादन में कि वहाँ के किसान जो हैं बहुत संगठित हैं और इस तरह से बढ़ा। तीसरा चीज है कि जो आज हमारे पास युवा बहुत है, IT के बच्चे हैं, MBA के बच्चे हैं, बाहर किस तरह भेजना है, उसके प्रोसेसिंग में क्या करनी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से हम रिटेल चेन में बहुत लंबे समय तक आम की उपलब्धता करें, तो हम इस तरह से इस पूरे आम के जो व्यवसाय है, जो उसका उत्पादन से लेकर निर्यात तक, ये पूरी चेन को दुरुस्त कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं स्टेक होल्डर। और समय के साथ हर एक को मैं करता हूँ कि प्रशिक्षण लेनी चाहिए
1: जी।
0: और जाके देखना भी चाहिए जैसे विश्व के अन्य देशों में किस तरह से खेती की जाती है, और उस तरह की तब्दीली हमें भी लाना पड़ेगा। और जैविक और हमारा जो प्राकृतिक खेती है, ये तो बहुत बड़ा एक मैं कहूँ कि हमारे देश को मिला कि कुछ राज्यों में जहाँ दूर दूरस्त हमारे जो जनपद है वहाँ तो कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, तो वहाँ के उत्पाद प्राय बाजार में अच्छी कीमतें देती हैं, और वहाँ किसान को भी और हमारे कृषक समूह को भी लगना पड़ेगा, जिससे कि जितने भी उत्पाद हैं उसके जो है मैं कहूँ कि एक तरह से सारे स्टेक होल्डर एक साथ आएं, जो लोग मीडिया से जुड़े हैं, जो लोग उसके इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो लोग उसके निर्यात और कोल्ड चेन से जुड़े हैं या प्रसंस्करण से जुड़े हैं, तब जाके ये हमारा आम जो है विश्वव्यापी फल तो है ही है, सभी जगह मांग भी है, लेकिन हम उसके मानकों पे खरे उतरेंगे और ये इंडस्ट्री को और इसके सारे जुड़े जो लोग हैं उनको फायदा होगा
1: जी। चलते चलते एक और सवाल मेरा आपसे, अंतिम सवाल, आम उत्पादन में और जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें AI और ड्रोन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है क्या?
0: एक बात हो रही है जैसे कि हम जब उत्पादन से करते, यहाँ पे अब एक सुना होगा आपने क्लीन प्लान प्रोग्राम जो भारत सरकार ने किया है कि हमारी नर्सरियां एक्रेडिटेड हों, जो हमारे देश में पौध तैयार हो उसकी ट्रेसिबिलिटी रहे, आपने दशहरी लगाए और पता चला कुछ दिन के बाद वो लंगड़ा निकल गया या कोई और किस्म निकल गई, बीजू निकल गया, इस तरह की बात ना हो, तो इसमें नर्सरी से लेकर और जब हम उत्पादन कर रहे हैं उनमें कौन सी जो उसमें जब भी हम उसमें कोई भी शस्त्रक्रिया करते हैं या खाद डालें या जो कीट या रोग प्रबंधन करें, तो उसकी सारी प्रणाली रिकॉर्डिंग होती है, ट्रेसिबिलिटी का एक मुख्य माध्यम है। फिर उत्पाद बनता है, आपने देखा होगा कि अब जितने भी डब्बा बंद हमारे उत्पाद आ रहे हैं, चाहे फल हो सब्जी हो, उस पे आप बारकोडिंग देख रहे होंगे, QR कोड देख रहे होंगे, ये सारी चीजें दर्शा रही हैं कि उपभोक्ता ये जानना चाहता है कि उत्पाद जो है वो किस तरह तैयार किया गया, किन परिस्थितियों से गुजरा है और कैसे उसके पास पहुंचा है, तो उसे भी अब AI और ये जो है ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकेजिंग, अब ये सारी जो है सेंसर बेस्ड होने लगी हैं। किसी में अगर कोई अवगुण है या कुछ में कुछ रोग लगा हुआ है या उसमें फल मक्खी का इन्फेक्शन है, ये अब इमेजिंग के द्वारा सेंस करके हम निकाल देते हैं
1: जी।
0: और सेंसर भी इस तरह से आ गए हैं कि फल अगर खराब हो रहा है, अगर हमने कहीं दूरस्थ भेजा हुआ है, तो ये उसमें कलर चेंज हो, बायोसेंसर्स कहते हैं, वो उसको देखने के बाद ही बोल सकते हैं नहीं या खाने योग्य नहीं, इसको आप फेंक सकते हैं
1: जी।
0: तो

0: हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर जयप्रकाश प्रधान वैज्ञानिक फल विज्ञान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से आप आए और श्री अवनीश कुमार त्यागी नर्सरी आप चलाते हैं और आम के किसान हैं गाजियाबाद से आप हमारे बीच आए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए अपना समय हमें देने के लिए
1: धन्यवाद
0: तो अपने किसान भाइयों को तो हम इतना ही कहेंगे कि आप नई नई तकनीक अपनाइए जो सुविधाएं सरकार विभिन्न संस्थानों के माध्यम से विभिन्न परिषदों के माध्यम से आपको देना चाहती है उन सुविधाओं का लाभ उठाइए अपने आप को अपडेटेड रखिए साथ ही जो युवा पीढ़ी है उसका भी साथ लीजिए तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिलते रहेंगे और दांत खट्टे नहीं होंगे इतनी मेहनत करने के बाद तो हम यही कामना करते हैं कि जो फलों का राजा आम है वो दुनिया में भी भारत का नाम चमकाता रहे इसी कामना के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से अनुमति लेती हूँ कार्यक्रम संयोजन था शिव नंदन लाल का और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स और शाहनवाज खान नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। 2 दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 वर्षों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि ये वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाती है। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors, and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity, and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
3: Prime Minister Narendra Modi will arrive in Slovakia later tonight, marking the first ever visit by an Indian Prime Minister to the country. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks with Slovakian Prime Minister Robert Fico in Bratislava. Union Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said India's space economy is poised to grow from the current $8 to $9 billion to nearly $40 to $45 billion over the next decade. Addressing a press conference in New Delhi, the minister said this growth is driven by policy reforms, growing private participation, and a rapidly expanding innovation ecosystem. In Maharashtra, 8 devotees, including children, died after a pickup vehicle carrying them fell into a roadside well in Solapur district yesterday. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives in the accident. In a social media post, Mr. Modi said that his thoughts are with the bereaved families during this hour of grief and prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an excretia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. He added that the injured would be given 50,000 rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis expressed grief at the tragic accident. He also announced an excretia of 5 lakh rupees to the families of those who died in the accident. The National Testing Agency NTA has released the admit cards for the NEET UG re-examination for admission to the undergraduate medical courses. Candidates can download their admit cards from the NTA's official website, neet.nta.nic.in. The re-examination is scheduled to be held on 21st of this month from 2 p.m. to 5:15 p.m. NTA has advised the candidates that they should verify their bank account details for refund before downloading the admit card. The Criminal Investigation Department, CID, has interrogated Trinamool Congress MP Abhishek Banerjee for over 9 hours for his alleged involvement in the signature forgery case of party MLAs. According to the sources, the agency interrogated Trinamool Congress MLA Kunal Ghosh and Abhishek Banerjee face-to-face at the CID headquarters in Kolkata. In the US, a plane carrying passengers planning to go skydiving crashed in Missouri, killing all 12 people on board, authorities said. Missouri Highway Patrol Sergeant Justin Ewing stated that the crash will be investigated by the National Transportation Safety Board. In archery, India's Neeraj Bhumadevara and teenager Kumkum Mohod clinched the gold medal in recurve mixed team event at the World Cup Stage 3 at Antalya in Turkey. The Indian duo produced a brilliant display to upset reigning Olympic champions Oh Ye-jin and Kim Dae-deok of South Korea 5-1 in the finals. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है और मैं हूं सुरभि आपके साथ प्रोग्राम गीत सुहाने लेकर। चांदनी रात भर सारा जहां अच्छा लगा, चांदनी में रात भर सारा जहां अच्छा लगा, धूप जब फैली तो अपना ही मकां अच्छा लगा। आके अब ठहरे हुए पानी से दिलचस्पी हुई, आके अब ठहरे हुए पानी से दिलचस्पी हुई, एक मुद्दत तक हमें आवे रवा अच्छा लगा। चांदनी में रात भर सारा जहां अच्छा लगा, धूप जब फैली तो अपना ही मका अच्छा लगा।

0: खोया खोया ये चांद अक्सर किसी की यादें ले ही आता है। बहुत खूब कहा है किसी ने कि ख्वाहिश मुझे जीने की ज़्यादा भी नहीं है, ख्वाहिश मुझे जीने की ज़्यादा भी नहीं है, वैसे अभी मरने का इरादा भी नहीं है। हर चेहरा किसी नक्श के मानिंद उभर आए, हर चेहरा किसी नक्श के मानिंद उभर आए, ये दिल का वरक इतना सादा भी नहीं है। घबरा के नहीं इसलिए मैं लौट पड़ा हूँ, घबरा के नहीं इसलिए मैं लौट पड़ा हूँ, आगे कोई मंजिल कोई ज़्यादा भी नहीं है, ख्वाहिश मुझे जीने की ज़्यादा भी नहीं है, वैसे अभी मरने का इरादा भी नहीं है।
1: ए दुनिया उसी की ज़माना।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं सुरभि हूँ आपके साथ। बहुत खूब कहा है किसी ने कि मैं नज़र पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, मैं नज़र पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहों को कहीं रात ढल न जाए। मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें कहीं रात ढल न जाए। मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, ये किसी की है अमानत मेरे साथ जल न जाए, मैं नज़र पे जी रहा हूँ ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहों को कहीं रात ढल न जाए।

किसी सूरत भी नींद आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, कोई शय दिल को बहलाती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, जो मेरे ख्वाबों में आकर तसल्ली मुझको देती थी, वो सूरत अब नजर आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। और बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत ही प्यारे नगमे हम आपको सुनवा रहे हैं। और इसी श्रृंखला में एक और बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आए हैं, फिल्म है एक मुसाफिर एक हसीना। उससे पहले बहुत खूब कहा है किसी ने कि अभी आंखों में शमाएं जल रही हैं, प्यार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है, हजारों जख्म खाकर भी मैं जालिम के मुकाबिल हूँ, खुदा का शुक्र है अब तक दिले खुददार जिंदा है, अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सौरभ के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि जुल्फ को अब्र का टुकड़ा नहीं लिखा मैंने, आज तक कोई कसीदा नहीं लिखा मैंने, कभी नक्काश बताया कभी मीमार कहा, दस्त फनकार को कासा नहीं लिखा मैंने, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, तू मेरे पास था या तेरी पुरानी यादें, कोई एक शेर भी तन्हा नहीं लिखा मैंने।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब चलते चलते जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उससे पहले कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। जो प्यार करेंगे जानेंगे हर बात हमारी मानेंगे। जो खुद ना जले हों उल्फत में वो आग को पानी कह देंगे। इस दिल में जरा तुम बैठो तो कुछ हाल हमारा पूछो तो हम सादा दिल हैं अश्क मगर हर बात पुरानी कह देंगे। समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जबानी कह देंगे। कुछ दूर हमारे साथ चलो हम दिल की कहानी कह देंगे।

इसी के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत

0: इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रेनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रास्तिलावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालशिरस तालुका में मासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाली के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
4: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation, and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling, and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI Governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a national

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनका नाम लेने की जरूरत नहीं होती, दिल खुद उनकी पहचान

मैदान बन जाता है और चांदनी रात में उसकी यादें और गहरी हो जाती हैं जब एक चेहरा खामोशी से दिल में उतर आता है। शायद तभी कहते हैं कि प्यार का कोई नाम नहीं होता, ये केवल एक एहसास है जो किसी की मुस्कान से शुरू होकर दिल में हमेशा के लिए ठहर जाता है। तो चलिए रात सुरमई का आगाज करते हैं इस बेहद ही चुलबुले गीत के साथ। फिल्म है ये दिल लगी।

ये रात जब खामोश हो जाती है तो दिल की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही सुनाई देने लगती हैं, और ऐसे में किसी की याद जहां मुस्कुराहट देती है वहीं किसी की याद दिल को बेचैन कर जाती है। शायद यही असर है मोहब्बत का, जहां एक इंसान की कमी सुकून ले जाती है और दिल बस उसी चेहरे का उसी आवाज़ का इंतज़ार करता रहता है। तो चलिए अब अगला गीत सुनते हैं ऐसे ही बेकरार दिल के साथ।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। तो चलिए अब अगला गीत है फिल्म डर से।

कभी कभी ये दिल बिन बताए बदलने लगता है, किसी की छोटी छोटी बातें याद आने लगती हैं, किसी की हंसी बेवजह याद आने लगती है, फिर चांद वही होता है, रात वही होती है, लेकिन दिल के एहसास बदल जाते हैं। हर तारे में बस उसी का चेहरा नजर आता है और ये दिल धीरे से मान लेता है कि हाँ शायद हो गया है तुझको प्यार। तो चलिए इस बेहद खूबसूरत रात में मोहब्बत की हल्की सी दस्तक और दिल के मीठे एहसास के साथ सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

कुछ नजरें दिल पर असर छोड़ जाती हैं और कभी-कभी किसी की आंखों में ऐसा अपनापन होता है कि दिल बार-बार वहीं ठहर जाना चाहता है। शायद कोई है जिसकी एक नजर आज भी दिल की धड़कनों को तेज कर देती है और दिल उसके करीब खुद को महसूस करने लगता है।

और इसी गीत के साथ रात सुरभि का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश

0: मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। अपराध जांच विभाग सीआईडी ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी से पार्टी विधायकों के हस्ताक्षर में धोखाधड़ी के मामले में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के विधायक कुणाल घोष और अभिषेक बनर्जी से आमने सामने पूछताछ की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट www.neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये हादसा मालशिरस तालुका में महासवाड पंढरपुर मार्ग पर तांडुलवाड़ी के पास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 इंजन खराब होने के कारण डूब गई। इस पर सवार सभी 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप ए के मुकाबले में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के चौथे दिन जर्मनी ने वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रही टीम कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi concluded his visit to Nice, France, after holding extensive discussions with French President Emmanuel Macron and participating in a series of engagements aimed at deepening the India-France Special Global Strategic Partnership. More from our correspondent.
2: The visit witnessed several important outcomes across technology, innovation and economic cooperation. The most significant was the adoption of the India-France Innovation Roadmap 2030, providing a framework for collaboration in artificial intelligence, startups, research, skilling and innovation ecosystems. Prime Minister Modi and President Macron also jointly inaugurated Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, leading academic institutions, investors and technology leaders. The two countries announced the creation of a joint India-France AI Working Group on AI governance, launched an economic security dialogue focusing on critical technologies and resilient supply chains, and agreed to establish a high-level annual mechanism to pursue the goal of doubling bilateral trade over the next 5 years. Another key outcome was the establishment of a National Center of Excellence for Skilling in Aeronautics and Allied Sectors at NSTI Kanpur, aimed at strengthening workforce readiness in aviation and aerospace. Beyond innovation and technology, the leaders reviewed cooperation in defense, space, civil nuclear energy, connectivity and global affairs, reaffirming their shared commitment to a future-oriented partnership. The visit underscored the growing strategic convergence between India and France and their common vision for innovation-led growth and global stability. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: After concluding his visit to Nice, France, Prime Minister Narendra Modi has arrived Slovakian capital Bratislava for the maiden visit. He was received by Slovak Foreign Minister Juraj Mlinar. During his two-day visit, Mr. Modi will meet Slovakian President Peter Pellegrini and hold talks to Slovak.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 7.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है रात्रि के 3:11:09। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमराही। युगल गीतों से सजे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल।

लता मंगेशकर और मन्ना डे के स्वरों से सजा ये गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था। हसरत जयपुरी की लिखी रचना, फिल्म का नाम चोरी चोरी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1956 में। मित्रों, हम सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सफर में एक दूसरे के हमराही बनते हैं। इस सुरीले सफर के हमराही हैं हम सभी, और जब हमराही अच्छे हों तो ये सुरीला सफर और भी ज्यादा खूबसूरत हो उठता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये सफर जीवन भर का सफर हो तो क्या कहना, थोड़ा सा भी अगर समय का ये सफर हो तो कब गुजर जाता है, ये समा पता ही नहीं चलता।

शीश वाडकर और लता मंगेशकर के स्वरों से सजाइए गीत। अभी आपने सुना दो दिलों की दास्तान इस फिल्म से। ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों 1985 में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, अनजान की लिखी रचना।

बहुत ही सुंदर गुफ्तगू से सजा ये गीत कि पहली मुलाकात में प्यार जताया नहीं करते और पहली मुलाकात में प्यार जताया नहीं करते और उसके बाद जो जो जवाब आ रहे थे बहुत ही सुंदर। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों से सजा ये गीत ओपी नैयर का संगीत बद किया था साथियों। राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना थी, फिल्म का नाम दो दिलों की दास्तान, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1967 में। और अब कोई किसी को जगा रहा है या सुला रहा है, सुनते हैं इस गीत में।

एक सूरत दो दिल ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना 1968 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों आरती मुखर्जी और सुबीर सिंह की आवाजों का समन्वय था और बिजन पाल का संगीत था रामजी सिंह ने ये गीत लिखा था

मोहम्मद रफिया शबोसले की स्वरों से सजा ये गीत शंकर जयकिशन का संगीत था साथियों हसरत जयपुरी की लिखी रचना थी और फिल्म का नाम बदतमीज जो रिलीज हुई थी 1966 में और अब इस अगले गीत में एक प्रतीक्षारत बात हो रही है जी हाँ बहुत दिनों से हमें इंतजार था यानी नायिका को इंतजार था इस बात को कहने का कहलवाने का आखिर वो वक्त वो सुनहरी घड़ी आ ही गई

परिणय फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना साथियों, मन्ना जी और वाणी जयराम की स्वर थी। जयदेव का संगीत नक्श लायलपुरी की लिखी रचना थी। 1974 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं युगल गीतों से सजा कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम में आप है मेरे साथ यानी अपने मित्र नीता अग्रवाल के साथ। रात्रि के 3:41 और 40 सेकेंड कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

मोहम्मद रफीकी तदत के स्वरों से सजा ये गीत इकबाल कुरैशी का संगीत बद किया नगमा अभी आपने सुना। शकील बदायूं ने की लिखी रचना थी। फिल्म का नाम पंचायत, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1958 में।

किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजों से सजाई ये गीत ब्लैकमेल फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों 1973 में ये फिल्म रिलीज हुई थी कल्याण जी आनंद जी का संगीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना साथियों जहां प्रेम होता है वहां डर भी व्याप्त होता है डर किसी कारण से गलतफहमी ना हो जाए कोई दूरी ना बन जाए कोई ऐसा कारण ना बन जाए कि गलतफहमी हो मनमुटाव हो दूरी हो इसी तरह की डर की सुंदर वानगी से सजाइए गीत जी हाँ डर की सुंदर वानगी क्योंकि गीत है ना गीत में इसी तरह की बातें होती हैं जो बड़ी सुंदरता से कही जाती हैं इसी तरह का ये गीत है आइए सुनते हैं इस गीत का भाव

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वरों से सजा ये गीत ब्लैक कैट फिल्म से 1959 रिलीज फिल्म एंदत्ता का संगीत जानिसार अख्तर की लिखी रचना आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आइए सुनते हैं

लता मंगेशकर मोहम्मद रफीकी आवाज से सजा ये गीत सुन रहे हैं आप काला पत्थर फिल्म से 1979 रिलीज फिल्म राजेश रोशन का संगीत साहिल लुधियानवी की लिखी रचना ये थी आज के हमराही कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने उनका स्वागत किया। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है प्रातः के 4:11 और 12 सेकेंड। प्रस्तुत है कार्यक्रम अरुणिमा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। साथियों, जीवन पथ पर चलते चलते कई बार ऐसे साथी भी मिल जाते हैं जो अजनबी होकर भी बड़े अपने से लगते हैं। उनकी आभा एक अरुणिमा की भांति होती है जो हमारे जीवन पथ को प्रकाशवान करती है।

लता मंगेशकर की आवाज से सजा ये गीत आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, असद भोपाली की लिखी रचना। 1965 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम हम सब उस्ताद हैं।

ऐसे गीत सुनते हैं तो बिल्कुल बहारों का समा ही बंद जाता है। साथियों आशा भोसले मोहम्मद रफी के स्वरों से सजा ये गीत बंबई का बाबू फिल्म से अभी आपने सुना। 1960 रिलीजी फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना। साथियों मन में जब खुशी पनपती है तो जिया बिल्कुल डोलने लगता है, इसी तरह की सुंदर खुशी का इजहार लिए ये रचना सुनते हैं।

उमा देवी की आवाज से सजा ये गीत अनोखी अदा फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1948 में और इस गीत का जादू आज भी बरकरार है। साथियों, नौशाद का संगीत, शकील बदायूं की लिखी रचना। साथियों, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ बदल जाती हैं, स्थिति परिस्थितिवश या कैसे भी। इसी तरह से एक पतंग उड़ाने वाली जो बात थी, कही कि एक मनोरंजन का साधन हुआ करता था, अब बहुत कम देखी जाती है। कोई कोई त्योहार पर ही ये हमें देखने को मिलती हैं, आसमान में रंग बिरंगी प्यारी प्यारी पतंग। एक पतंग उड़ने से संबंधित एक गीत आइए सुनते हैं।

मोहम्मद रफी लता मंगेशकर के स्वर उसी सजाशी ये गीत चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया। ये गीत था राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। फिल्म का नाम भाभी, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1957 में। और अब दिल की मुराद पूरी हुई, घर आ गए हैं दिल में बसने वाले।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों से सजा ये गीत आवारा फिल्म से अभी आपने सुना मित्रों। 1951 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना। साथियों, सबसे अच्छी सकारात्मक बात वो होती है जब हम किसी कारणवश उदास हो। दुख सुख जीवन की पल है, आते जाते रहते हैं। कभी हम दुखी हो जाते हैं किन्हीं बातों पर, गमगीन हो जाते हैं, कोई यादें भी ऐसी हो सकती हैं या कोई घटना दुर्घटना। लेकिन जब भी हम उदास होते हैं हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमारे आसपास है और उस आसपास की जो महसूसियत है उससे हमें बल मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है, आगे जीवन जीने का हौसला हमें मिलता है। उदासी कई हद तक कम होती है।

शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत अभी आपने सुना। गुलजार की लिखी रचना थी, मोहम्मद रफी और शारदा की आवाजें थी। फिल्म का नाम सीमा, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1971 में।

श्रोता साथी इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा। प्रातः के 4:36 और 51 हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी मित्र नीता अग्रवाल। कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, गीतों के सफर में बढ़ते हैं आगे। और अब कैसे समझाऊं बड़े ना?

आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजों का सुंदर समन्वय लिए ये गीत सूरज फिल्म से अभी आपने सुना। 1966 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत, हसरत जयपुरी की लिखी रचना। साथियों, हर दिल में हर समय कुछ ना कुछ आस उम्मीद पनपती रहती है, उन्हें पूरा करने की चाहत में हम अपना कर्म करते रहते हैं।

सुमीर सेन की आवाज़ से सजाई ये गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत था। हजरत जयपुरी की लिखी रचना, 1961 रिलीज। इस फिल्म का नाम आस का पंछी। और अब गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। संदेश पूर्ण गीत आइए सुनते हैं।

किशोर कुमार की आवाज से सजा ये संदेशपूर्ण गीत अभी हमने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीत, आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम दोस्त, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1974 में।

लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज से सजाई ये गीत आप सुन रहे हैं जिगरी दोस्त फिल्म से 1969 रिलीज ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत आनंद बख्शी की लिखी रचना और अब अरुणिमा कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये नगमा।

शमशाद बेगम और जोहरा बाई अंबाले वाले के स्वरों से सजा ये गीत अनमोल घड़ी फिल्म से अभी आपने सुना। ये फिल्म रिलीज हुई थी वर्ष 1946 में। नौशाद का संगीत था तनवीर नकवी की लिखी रचना। इसी रचना के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की दो दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की वहां की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कल नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तीन दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर कल विशेष संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता और भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति पर चर्चा की गई। सम्मेलन को विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संबोधित किया। फ्रांस का एवियन शहर आज से शुरू हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे विश्व के नेता और शिष्टमंडल तीन दिन के आयोजन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों G7 देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करेंगे। G7 देशों में फ्रांस के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल हैं। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में भाग लेंगे।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः की 5:11 और 6 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम भोर सुहानी। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, मैं हूं आपकी मित्र नीता अग्रवाल। मित्रों, विवेकानंद जी का कथन है, जिस तरह विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं होना जल समुद्र में मिला देती हैं, और उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें हमारे ईश तक लेकर जाता है।

मुकेश की आवाज से सजा ये गीत अनाड़ी फिल्म से आपने सुना। 1959 रिलीज ये फिल्म, शंकर जयकिशन का संगीत था, शैलेंद्र की लिखी रचना थी। मित्रों, भोर का समय, किसी घर में नृत्य कार्यों की शुरुआत तो कहीं स्कूल दफ्तर जाने की तैयारी, कुल मिलाकर जो भी सवेरे के काम होते हैं उठ करके हम सब चलते हैं, करते हैं उन कार्यों को, और ऐसे में साथी बनते हैं वो गीत जो हमें और भी ऊर्जावान और आशावादी बनाते हैं।

अभी तो जी ले, इस फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। साथियों, सुबह का जो वक्त होता है बहुत ही खास समय होता है, अरुणिमा होती है, भोर की जो किरणें हैं धरती पर अपने रंग बरसाती है, छटा बरसाती है, इंद्रधनुषी रंग बरसाती है जिससे पूरी धरती रोशन हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, क्योंकि जब हम किसी की मुस्कुराहटों पर निसार हो जाएंगे और किसी के लिए मुस्कुराहट का सबब बनेंगे तभी तो हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आएगी, बहुत ही संतोष मिलता है। साथी करके तो देखें, बहुत अच्छा लगेगा।

चंद्रपी की आवाज से सजाएगी धरती कहे पुकार के इस फिल्म से अभी आपने सुना 1969 रिलीज ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी और अब चलते हैं इन अलबेली राहों पर